मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल के 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आज बुधवार है, सक्षम 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 13 मई 2026 ईस्वी, प्रातः के 5 बजकर

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए

0: ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this

स्वतः महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं और भक्त की सच्ची पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वास यह है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी शिवजी का साथ हमेशा रहता है। जब जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही मन को शांति और शक्ति देता है। महादेव के प्रति समर्पण का मतलब है कि अब मेरे जीवन का हर फैसला, हर सुख दुख उन्हीं के हाथों में है। वे जो करेंगे वह कल्याणकारी ही होगा। आइए श्रोताओं, आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत भोलेनाथ को याद करते हुए।

माता रानी दुर्गा के प्रति भक्ति और श्रद्धा के विचार अत्यंत पवित्र और मन को शांति देने वाले होते हैं। माता रानी आदि शक्ति है जो भक्तों के दुख दर्द दूर करती है और उन्हें शक्ति, साहस और प्रेम का आशीर्वाद देती है। माता के चरणों में संपूर्ण संसार का सुख और शांति मिलती है। उनकी शरण में आने वाले हर भक्त को सुकून मिलता है। जब माता रानी दरबार सजाकर आती हैं, तो भक्तों के मन की हर मुराद पूरी होती है और दुखों का अंत होता है। आइए माता रानी की भेंट।

भक्ति रसनाओं का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। अगली भक्ति रचना इन विचारों के साथ। श्री हनुमान जी निस्वार्थ सेवा और भक्ति की पराकाष्ठा हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। बजरंगबली का नाम लेने मात्र से ही मन का डर दूर हो जाता है और साहस का संचार होता है। वे जीवन के हर संकट को हरने वाले और नकारात्मकता को दूर करने वाले हैं। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। वे सिखाते हैं कि विनम्रता और सेवा ही सच्चे भक्त के गुण हैं। आइए बजरंग बली को याद करते हुए उनका ये भजन आप सभी के लिए।

भगवान झूलेलाल सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि एकता, विश्वास, शांति और जल संरक्षण के जीवंत प्रतीक हैं। भगवान श्री झूलेलाल को दरियालाल या जल देवता यानी कि वरुण देवता के रूप में पूजा जाता है, जो ये संदेश देते हैं कि जल ही जीवन है। भगवान झूलेलाल आस्था, अटूट विश्वास और संकट के समय में साहस का नाम है। उनका संदेश आयोलाल सभई चौ झूलेलाल। आइए भगवान श्री झूलेलाल को याद करते हुए गुरदास मान और साथियों के स्वर में ये भजन।

लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्हें हम सभी रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, भक्त उन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, जो उनके चरण चिन्हों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और भजन कीर्तन के द्वारा अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जब बाबा के दरबार में भक्त पैदल चलकर जाते हैं तो बाबा से क्या अनुरोध करते हैं इस भजन के माध्यम से?

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। आइए सुने चिंतन। आज का विषय है नाम की महिमा, और वाचक स्वर हैं यशपाल सिंह राठौड़ के।
1: यह निर्विवाद सत्य है कि ईश्वर का वास घट घट में होता है, या हम यूं कह सकते हैं प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण और नारद जी के मध्य हुए संवाद के अनुसार एक स्थान पर भगवान कृष्ण नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही कैलाश पर्वत पर अथवा किसी सागर में निवास करता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वही होता है मेरा वास्तविक निवास। ऐसी पवित्र भावना, ऐसा अटल विश्वास जिस भक्त के मन में समा जाए, तब उस उल्लसित स्थिति का आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। जिसने

0: नर नारी में नारायण की मूर्ति का एहसास कर लिया, वह ईर्ष्या अहंकार की मलिनता से स्वतः ही मुक्त हो गया। कहते हैं हम सबका एक ही मालिक है, हम सभी उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने इस सुंदर संसार की रचना की है। फिर जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत को लेकर ये भेदभाव कैसा? भारत जैसे महान देश में जहाँ सभी धर्मों का समुचित सम्मान किया जाता है, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक कहलाने में हमें कितने फख्र का एहसास होता है, कितना गर्व होता है। जिस तरह सभी नदियाँ बहते बहते अंत में एक ही सागर में आकर विलीन हो जाती हैं, उसी तरह प्रभु अथवा खुदा के कई नाम हैं। कोई ईश्वर के नाम से उनकी भक्ति करते हैं तो कोई अल्लाह ताला के नाम से उनकी इबादत करते हैं। भक्ति के विविध रास्ते हैं, पर अंत में सभी रास्ते एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। भक्ति मार्ग के पथिक को वहाँ पहुँचने पर मिलती है एक अनिर्वचनीय शांति, प्रभु सुकून का एक एहसास जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती। आवश्यकता इस बात की उस परवरदिगार, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था कभी खंडित न हो। जीवन यात्रा में चाहे अनुकूलताएं, चाहे प्रतिकूलताएं, सुख हो अथवा दुख हो, हम उस परमपिता परमेश्वर को भूले नहीं। मन में एक विश्वास कायम रहे, अन्यथा बात बनेगी नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अतः निर्मल भाव, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसका गान करते रहें, उसकी प्रार्थना, साधना, उपासना में लीन रहकर एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उस परमेश्वर का आपके सिर पर वरदहस्त बना रहे, सभी प्राणियों पर उसकी कृपा बनी रहे, यही है नाम की महिमा।
1: नाम की महिमा, इस विषय पर आप चिंतन सुन रहे थे यशपाल सिंह राठौड़ से। लीजिए सुनिए ये संदेश।

बिल्कुल श्रोताओं, ये है आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई अपने कार्यक्रम सुनेंगे। खेती हर वास्ते जानकारी का विषय रहेगा पानी मिट्टी की जांच। 7:20 पर आप सुना करते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 242 को। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुना करते हैं सुबह 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। सुबह 8 बजे वक्त रहता है समाचारों का, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45।

45 मिनट पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुबह 9 बजे हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाते हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे बैरागनाथ। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुहाना सफ़र फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम है ये, सुबह सुनेंगे आप 10 बजे। सैनिकों के लिए इसका समय रहेगा दिन में 11 बजे। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं हमारे केंद्र से सुबह 6:50 पर, दिन में 12 बजे और संध्या 6 बजे। कुछ बातें कुछ गीत इसका समय रहेगा दिन में 12:05 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 12:30 पर। 12:50 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेत खलियान। जानकारी का विषय रहेगा पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम महिला जगत। इस कार्यक्रम में कुछ विषयों पर आप चर्चा सुनेंगे और साथ में सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वार्ताकार पूनम कुमावत से सुमन शेखावत की बातचीत। दिन में 2 बजे वक्त रहता है समाचारों का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाते हैं। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुना करते हैं युवावाणी संध्या 5 बजे। सिरैकी का समय रहता है संध्या 6:05 पर। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुना करते हैं चौपाल संध्या 7 बजे। एक ही फिल्म से इसका समय रहेगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स सेकेंड रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएगी। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो मन भवन। प्रस्तोता होंगे सुमन शेखावत। निर्देशक और संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं और ये वक्त हो चला है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर समाचार अंग्रेजी में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनांके राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरणविषये वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रियपरीक्षणसंस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति। सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति। पुनः परीक्षायै अतिरिक्तशुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी एके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

0: अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to

0: सेंटीमीटर ताई गहरो एक खड्डो खोद देनो है, जको कि लगभग वी के आकार में हुआ, यानी अंग्रेजी का अक्षर वी के बरगो हुआ है। और बी खड्डे ने खोद गए और बिंग अंदर एक पासे शू लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी एक एक समान ऊपर शू नीचे एक परत उतार गए और बिन्हें इकट्ठो कर गए और एक बर्तन के अंदर रख देना चाहिए। और इन प्रकार शू अपन ने इं पूरे खेत के में 8 से 10 जगह यहाँ करनो है और नमूना ले गए और ई माटी ने इकट्ठी करके रख देनी है। बिंग बाद में किसान भाई हो ज्यादा माटी सारी इकट्ठी हो जाए 8 से 10 जगह शू जना अपन के करनो है कि भी माटी ने बेली कर गए और बिंगा 4 टुकड़ा करना है। 4 टुकड़ा बराबर भाग में होना चाहिए, जैके शू एक ऊपर शू नीचे तेंगी लीक खींच गए और एक आडी लीक खींच गए भी मिट्टी का 4 टुकड़ा कर देना है। और बा टुकड़ा मा है कि आमने सामने का जैका 2 टुकड़ा है बाने निकाल गए फेंक देना है। और आ प्रक्रिया जकी है अपन जत्ता ही करनी है जत्ता की भी माटी का वजन आधा किलो ना रह जावे किसान भाइयों। और इंग बाद में जो काम करने वालों है वो है कि भी माटी ने जब आधा किलो रह जावे तो एक साफ कपड़े के थैले के माँ घाल गए और बिंग अंदर एक पर्ची घालनी है। और भी पर्ची के ऊपर किसान भाई लोग आपको नाम लिखेगा और पतो लिखेगा और भूमि की स्थिति लिखेगा, मुरबा नंबर, खसरा नंबर, रकबा नंबर लिख देगा। और बिंग अलावा अपन बिंग माँ आपको मोबाइल नंबर भी आपा लिख सका और सागे सागे और भी अगर कोई अपने समस्या है तो बिंगो भी अपन निदान पाण खतर बा समस्या लिख सका। और आ पर्ची एक अंदर होनी चाहिए थैले गए और एक बाहर होनी चाहिए, जैसे शू के वह कि कई बार ऊपरली पर्ची उतर जे तो माली पर्ची तो रेवे। बिंग अलावा जबकि नमूनों लेन खातर अपन ध्यान देने वाली बात है, बात करा तो आ है किसान भाइयों कि सबसे पहली बात तो आ है माटी को जको नमूनो लियानी वो दरखत के कन्नो कून लेना। और जठे कोई खाद को गड्ढो हुए, पुरानी मेड़ हुए या जठे पानी जमा होने वाली कोई जगह हुए, बठे शू अपन नमूनो कून लेनो। बिंग अलावा जकी बात आ है कि जकी जगह शू अपन नमूनो लेवा बठे कोई ताजी खाद चूनो या कोई भूमि सुधारक रसायन तुरंत ही ना गेरेड़ो हुए। बिंग अलावा जको मे जड़ को टेम हुए बिंग है तुरंत बाद में अपन भी जमीन पर नमूनो कौन लेनो, या जठे कोई रे खाद छिड़केड़ी हुए उर्वरक को छिड़काव करेड़ो हुए तो बठे शू अपन तुरंत बाद में बठू नमूनो कौन ही लेनो। जट तक बात है आगे और करा बुआई की, तो बुआई जद आप करानी किसान भाइयों बी शू लगभग 1 महीनों पहला आप माटी की जांच खातर नमूनो ले गए भेज देवा तो ठीक रेवे, क्योंकि बीशू के वह कि अपन पतो चल जाए कि अपन बुआई के टाइम किसे उर्वरक गो किसे पोषक तत्व गो किए कि उपयोग भी भूमि में और करना चाहिए जैसे शो अपनी फसल की उपज की है ज्यादा हुए। अगर आप बात करा खड़ी फसल की, तो खड़ी फसल के अंदर अगर अपन नमूनो लेनो है तो वो के नमूनो जो है कतार जकी वह नहीं फसल की पौधांगी बूंटांगी जकी कतार वह बिंग बीच शू अपन लेनो है। और बिंग अलावा जकी सारों मोटी एक ध्यान देने वाली बात है कि जकी भी कपड़े की या कोई और थैली के माँ आप नमूनों भेजा बा कोई खाद या रसायन या उर्वरक की ना हुए, यानी भी मैं कोई उर्वरक या खाद को उपयोग करेड़ो ना हुए भी इशू की है कि अपनी जाँच जकी है बा प्रभावित हो सके। कार्यक्रम को टाइम होने ला रही है पूरो, राम राम सा।
1: पानी मिट्टी की जांच, इस विषय पर आप जानकारी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते में। आइए सुने लोक भजन में विष्णु सागर को।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक भजन में विष्णु सागर को। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे अरण्यकांड में भाग संख्या 242 को। कलाकार हैं रविंद्र साठी।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भाग

भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्रीराम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना अरण्यकांड में भाग संख्या 242 को। कलाकार थे रविंद्र साठी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपके हर दिल अजीत साथी कुंदन कटारिया का आपका साथी हाजिर है ये प्रोग्राम लेकर। बात करेंगे कुछ विषयों पर और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। बात करते हैं सबसे पहले संवाद आपके व्यक्तित्व का आईना, क्योंकि हमारे शब्द, बोलने का लहजा और शारीरिक भाषा हमारी सोच, भावनाएं और चरित्र को उजागर करते हैं। सकारात्मक और संवेदनशील संवाद लोगों में स्नेह भरता है, जबकि नकारात्मक बातें माहौल को बोझिल बना दे सकती हैं। अपनी वाणी में मधुरता और तथ्य परकता रखकर हम एक प्रभावशाली

व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। संवाद और व्यक्तित्व के बीच गहरा संबंध होता है। कुछ बिंदु हैं इनके बीच के। वाणी का प्रतिबिंब, आप जैसा बोलते हैं वही आपका आंतरिक व्यक्तित्व है। कबीरदास जी के अनुसार, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भावनात्मक और बौद्धिक स्तर, आपके शब्दों

सोच समझकर धैर्य से सुनना और फिर बोलना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, जो जीवन की हर बाजी जीतने की क्षमता देता है। सकारात्मकता का प्रसार, संवेदनशील बातें दुख भरे माहौल में भी सकारात्मक ला सकती हैं, जबकि कड़वे शब्द खुशी को भी नष्ट कर सकते हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता, संचार कौशल ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का असली आईना होता है, जो रिश्तों को जोड़ता है और सफलता के द्वार खोलता है। हमारे शब्द केवल बात करने का साधन नहीं, बल्कि हमारे चरित्र का प्रतिबिंब है। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना ही एक परिपक्व व्यक्तित्व की निशानी है। तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए संवाद करने के तरीके से। बातें और भी करेंगे श्रोताओं, इस बीच आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत फिल्म सोहनी महिवाल से, आशा भोंसले और शबीर कुमार की आवाज़ में।

बिल्कुल श्रोता हूँ, बोल दो मीठे बोल। सुनिए, हमें आपस में संवाद एक दूसरे से मीठे शब्दों से ही करना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व बना रहे। बात करते हैं, दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करें। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करना न केवल मूड को अच्छा बनाता है, बल्कि सकारात्मकता भी लाता है। सुबह उठते ही हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करें, थोड़ा व्यायाम करें और खुद को एक नई उम्मीद दें। मुस्कुराकर किया गया दिन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए कुछ बातें हैं। हम सभी ईश्वर को धन्यवाद दें जब बिस्तर छोड़ते समय ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। सकारात्मक विचार, स्वयं को याद दिलाएं कि आज का दिन शानदार होगा। प्यारी मुस्कान, आईने में देखकर मुस्कुराएं और अपनों को भी मुस्कुराकर ग्रीट करें। व्यायाम योग, सुबह की ताजी हवा में टहलें और योग करें। एक प्यारी सी सुबह का संदेश, हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है, हर सुबह एक नया सपना जगाती है। मुस्कुराकर करो दिन की शुरुआत, क्योंकि खुश रहना ही जीवन सिखाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने जीवन में। एक और गीत फिल्म खून भरी मांग से, आवाजें हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और

बिल्कुल श्रोताओं, हंसते हंसते कट जाएं जीवन के रास्ते। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, अपने साथी कुंदन कटारिया के साथ। बात करते हैं आगे, फल खाइए, स्वस्थ रहिए। दैनिक जीवन में ताजे फलों का सेवन, जैसे कि सेब, केला, संतरा, पपीता, शरीर को आवश्यक विटामिन्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं, जो पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। रोजाना फल खाने से कैंसर, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। स्वस्थ रहने के लिए फल खाने के बहुत ही फायदे हैं, पाचन में सुधार होता है। अमरूद और पपीता जैसे फाइबर युक्त फल पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं, मजबूत इम्यूनिटी। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू और कीवी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। हृदय स्वास्थ्य, सेब, केला और अंगूर जैसे फल पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर हृदय रोगों से रक्षा करते हैं। वजन नियंत्रण, फल कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाले होते हैं, जो वजन घटाने में मदद करते हैं। त्वचा और बालों के लिए पपीता, आम और अनार में मौजूद विटामिन त्वचा को निखारते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। फल खाने के कुछ सुझाव। विविधता, हर दिन अलग-अलग रंग के फल खाने की कोशिश करें ताकि अलग-अलग पोषण मिले। फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह और दोपहर में होता है। रात को सोने से पहले फल खाने से बचना चाहिए। तो फलों को हमारे दैनिक जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, विटामिन्स हमारे शरीर को मिले। एक और गीत आप सभी के लिए, यशोदास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन बिना सुहागन। गीतकार इंदिवर और संगीतकार उषा खन्ना।

जी हाँ श्रोताओं, मधुबन खुशबू देता है। एक और गीत कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं आपको, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है अवतार। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: दिन महीने साल यूं ही गुजरते जाएंगे और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमको ही उस समय का उस घड़ी का इंतज़ार करना होता है। श्रोताओं, अब घड़ी हमें और इजाज़त नहीं देती आपसे बातें करने का। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N. मुरुगंदम और वित्त सचिव T. उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में

0: सभापति श्री रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित

0: की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत।

0: नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।

0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पुडुचेरी में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ

0: सामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवी मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म व जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म व जब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदामात के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आला, वजीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर जरूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वज़रा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकामात जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली, अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बुहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई

0: मुबैना नेट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिवीजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी के आर्जी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदाद शुमार से मुतालिक मशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदाद शुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लियामानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लियामान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। کہ مغربی بنگال کے عوام کی

भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कलाकार हैं पामेला जैन और उनके साथी।

भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे थे। आज के हमारे कलाकार थी पामेला जैन और उनके साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं।

0: जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।
2: सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया है। सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है। उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं, उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग

0: और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में AI तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में CBI ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप के न्यूज़ जोन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉर्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुने राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं बैरागनाथ।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं बैरागनाथ।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार हैं बैरागनाथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मरुमंगल, आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। कलाकार हैं बैरागनाथ। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। आज के हमारे कलाकार थे बैरागनाथ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म कामचोर से। आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा है हिंदी वन ने और संगीतकार राजेश रोशन। ये गीत इस बात के साथ, हर सुबह आपके जीवन में रोशनी कर दे, हर सुबह आपके जीवन में रोशनी कर दे, खुदा आपके गम को आपकी खुशी कर दे, जब छोड़ने लगे आपकी सांसें आपके साथ, जब छोड़ने लगे आपकी सांसें आपके साथ, खुदा उसमें शामिल मेरी जिंदगी कर दे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोताओ, आइए सुने फिल्म तोहफा से आशा भोसले और किशोर कुमार को।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अगला गीत फिल्म रामावतार से, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोतों, ये गीत है फिल्म सन्यासी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे

0: से भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोतों लीजिए सुनिए, फिल्म संगीत के आखिर में फिल्म 10 नंबरी का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को लिखा है मजरूह ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
3: क्या है? मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
4: अच्छा,
3: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
4: बाप रे।

के बाजार से भगवा चुनरी ले आना। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर।

सुहाना सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने साथी कुंदन कटारिया का आज का ये कार्यक्रम हमारा फिल्म संगीत पर आधारित है और समर्पित है भजन गायक और पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्म दिवस पर। आज 13 मई को उनका जन्मदिवस है। वे हिंदी फिल्मों के अलावा अपनी मातृभाषा गुजराती के लिए भी गाते हैं। मनहर उदास, वे पंकज उदास और निर्मल उदास के बड़े भाई हैं। मनहर उदास जिनको आज हम सभी मिलकर एक फूलों का गुलदस्ता यानी कि उनके गायक गीत उनको समर्पित कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई पूरी करके फिर नौकरी की तलाश में मुंबई चले गए। सबसे पहले उन्होंने 1969 की फिल्म विश्वास के लिए गीत गाया था। सुनवाएंगे उनके गाए गीत इस प्रोग्राम में सुहाना सफर में। इसी फिल्म से ही इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, विश्वास फिल्म से। मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

जी हाँ श्रोताओं, आपसे हम बात कर रहे हैं पंकज उदास के जन्मदिवस, माफ कीजिए, मनहर उदास के जन्मदिवस पर। पंकज उदास उनके छोटे भाई हैं। संगीत के प्रति आजीवन जुनून रखने वाले मनहर उदास को मुंबई के फिल्म निर्माता अपने बहनोई के माध्यम से संगीत उद्योग में प्रवेश मिला, जिन्होंने उन्हें संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया। मनहर अक्सर गीत रिकॉर्डिंग में दोनों की सहायता करती थी। जब गायक कलाकार मुकेश तुरंत उपलब्ध नहीं थे तो गीत को उदास की आवाज में डब करने का निर्णय लिया गया। बाद में मुकेश ने इसे गाया। 1969 में उनकी फिल्म आई थी विश्वास, जिसका गीत हमने अभी आपको सुनवाया। जब ये गीत मुकेश ने सुना तो उन्होंने कहा कि उदास ने गीत को पूरी तरह से गाया है और इसे इनकी आवाज में रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गीत हिट हो गया और उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ऐसे हैं पंकज मनहर उदास। एक और गीत उनकी फिल्म का कुर्बानी से, आवाजें कंचन मनहर उदास की। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मनहर उदास के गाए ये गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर में। उनके जन्म दिवस पर उन्होंने फिल्म जगत के कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई बॉलीवुड अभिनेताओं को अपनी आवाज दी है। उन्होंने गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली और अन्य कई भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए हैं। अपने छोटे भाई पंकज उदास की तरह वे गजलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 30 से अधिक एल्बम रिलीज किए हैं। उनका आखिरी एल्बम आशीर्वाद नवंबर 2013 में ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हुआ था। उन्होंने पंकज उदास के साथ एल्बम और लाइव शो में भी काम किया है। उनका 31वां एल्बम अलंकार 18 जनवरी 2015 को वडोदरा में आयोजित वर्ड फेस्ट में रिलीज हुआ था। उनका नवीनतम एल्बम आकर्षण 5 मई 2018 को गुजरात के आनंद में लॉन्च हुआ था। उन्होंने फिल्म कागज की नौ के लिए भी गीत गाए हैं। उनकी एक फिल्म खलनायक जिसका गीत आपको सुनवाते हैं मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी श्रोताओं, आपसे बात कर रहे हैं गायक कलाकार महनर उदास के जन्मदिवस पर। आज ये गीतों का गुलदस्ता उनको भेंट कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। फिल्मों के गाने जब भी हिट होते हैं तो उन्हें खूब सुना जाता है, लेकिन अक्सर उसे किसने गाया है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। पहले के दौर में भी ऐसे बहुत से गायक रहे हैं जिनकी आवाज़ से सजा हर गाना जादू बिखेर दिया करता था। पुराने दौर के गायकों में एक ऐसी ही मखमली आवाज़ का सिंगर था जिसने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने गाए, अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए, लेकिन वे इंडस्ट्री में ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर सके। हम बात कर रहे हैं फेमस सिंगर महनर उदास। एक और गीत उनकी फिल्म का राम लखन से। इस गीत में आवाज़ दी है महनर उदास और अनुराधा पॉटवाल ने। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। आज का ये प्रोग्राम समर्पित है गायक कलाकार महनर उदास के जन्मदिवस पर। एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक और भजन गायक जो हिंदी और गुजराती संगीत में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, वे प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास और निर्मल उदास के बड़े भाई हैं। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक सक्रिय गायक रहे हैं। एक और उनकी फिल्म नाम से गीत आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद अजीज और महनर उदास की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गली गली में जैसे कई लोकप्रिय बॉलीवुड गाने गाए हैं। और उनकी विशेषता ये रही है कि हिंदी सिनेमा में गायन के साथ साथ वे गजल गायकी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे मशहूर गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं मनहर उदास, जिनको आज आप और हम सभी उनके गाए गीतों से सजाया ये गुलदस्ता उनके जन्म दिवस पर भेंट कर रहे हैं। एक और गीत फिल्म हीरो से अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आपसे हम बात कर रहे हैं गायक कलाकार मनहर उदास के जन्म दिवस पर। उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई पूरी करके मुंबई आए और कल्याण जी आनंद जी के मार्गदर्शन में अपना करियर शुरू किया। अगर हिट गानों की बात करें तो उन्होंने तू मेरा हीरो है, सौदागर सौदागर और

अपनी बेहतरीन आवाज की वजह से मनहर उदास लोगों के बीच काफी मशहूर हो गए थे। एक समय ऐसा भी था जब उनका फिल्मी करियर ऊंचाई पर था। इसी दौरान उन्हें अचानक साईं भजन गाने का ऑफर मिला। उस समय उनका भजन गायक के प्रति रुझान नहीं था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने साईं के भजनों की पहली एल्बम साईं अर्पण तैयार की। इसके बाद उन्होंने लगातार भजनों की 30 एल्बम रिकॉर्ड की और भजन गायक में भी सफलता हासिल की। ऐसे हैं फिल्मी गायक और भजन गायक मनहर उदास, जिनको आज आप और हम सभी उनके गीतों का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। एक और गीत फिल्म कर्मा से अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मनहर उदास। उनके गीत हमेशा से श्रोताओं को पसंद आए हैं। मनहर उदास ने एक से बढ़कर एक गीत फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाए हैं। उनकी आवाज़ में अलग ही अपनापन झलकता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई मशहूर गानों को अपने सुरों में पिरोया। उनके गाए गानों में हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, तू मेरा जानू है, इलू इलू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तेरा नाम लिया जैसे मशहूर गीत शामिल है। और प्रोग्राम के आखिर में फिल्म त्रिदेव का ये गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और आप सुनिए ये गीत और प्रोग्राम से अनुमति दीजिए अपने साथी कुंदन कटारिया को। नमस्कार।

श्रोता अभी सुहाना सफर कार्यक्रम सुन रही थी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सरसने नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं पुकार फिल्म से। आवाजें आर डी बर्मन और अमिताभ बच्चन की है, तो लीजिए सुनते हैं ये गीत।

ये गीत हमने लम्हे फिल्म से लिया है। मिली जुली आवाज़ें लता मंगेशकर और हरिहरन की है। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत में पिरोया है शिव हरी ने।

लीजिए अब सुनते हैं पापा कहते हैं फिल्म से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाजों में। गीत के बोल गुलजार के हैं और संगीत राजेश रोशन का है।

लीजिए श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मन फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन संजीव दर्शन की है और आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सिंगिस किंग फिल्म से अगला गीत, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की मिलीजुली आवाजों में। गीत को लिखा है मयूरपुरी ने और संगीत प्रीतम का है।

गदर फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप अलका याग्निक और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत उत्तम सिंह का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है और श्रोता अभी सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं सिंगम फिल्म से, आवाजें श्रेया घोषाल और अजय की है। स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है अजय अतुल ने।

लीजिए अब सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की मिलीजुली आवाजों में। गीत को लिखा है देव कोहली ने और संगीत राम लक्ष्मण का है।

कुमार सानू और अलका याग्निक की मिली जुली आवाज़ों में ये गीत हमने गुलाम फिल्म से लिया है। समीर की शब्द रचना है और संगीत जतिन दलित का है।

तुमको ना भूल पाएंगे। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत सुनते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीत को लिखा है सलीम बिंजोरी ने और संगीत डब्बू मलिक का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और आज बातें होगी त्याग समर्पण पर। किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेत खलियान का समय रहेगा आज दोपहर के 12:50 पर और इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व और कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7 बजे। हमारे श्रोताओं के ईमेल पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये पत्रोत्तर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुनील वर्मा और साथ ही बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी इस कार्यक्रम में दी जाएगी। श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो मन भावन, जी हाँ, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात्रि 10 बजे। इस कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक रहेंगे नवीन सिसोदिया और प्रस्तुति रहेगी सुमन कवर की। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा आज दोपहर के 1:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के विषय रहेंगे जिंदगी को सुखमय बनाए स्पीड पर कंट्रोल करके, गर्मियों में कैसे करें हाथ पैर की देखभाल, कागज़ की बचत है ज़रूरी और घर पर कैसे बनाएं टेस्टी कुल्फी। प्रस्तुति अंकिता अरोड़ा की रहेगी और साथ ही इस कार्यक्रम में भेंट वार्ता भी सुनेंगे। भेंट वार्ता का विषय रहेगा मीडिया इन्फ्लुएंसर। वार्ता में पूनम कुमावत से सुमन कवर की बातचीत होगी। फिल्म संगीत का समय रहेगा आज दोपहर के 2:30 पर, शाम 7:45 पर और रात्रि 8 बजे होगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा आज शाम 6 बजे और इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी युवाओं की पसंद पुस्तकों पर और आज के इतिहास पर भी चर्चा होगी। साथ ही व्हाट्सएप संदेशों और पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद प्रस्तुत करेंगे राजेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज शाम 5 बजे। सुगम संगीत श्रोता सुनेंगे दोपहर की 12:30 पर और रात्रि 9:15 पर। सिराइकी का समय रहेगा आज शाम 6:05 पर। हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर और श्रोताओं ये थे हमारी आज की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

जी हाँ श्रोताओं, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सहस्नेह नमस्कार। श्रोताओं कहते हैं, सच्चा प्रेम अदृश्य होता है, जो ना तो होता है और ना ही कहीं दिखाई देता है, लेकिन अदृश्य होने के बावजूद दुनिया में एक से बढ़कर एक प्रेम गाथाएं हुई। शीरी फरहाद, लैला मजनू आदि प्रेम कहानियों ने अपना सर्वस्व लुटाकर भी सब कुछ पा लेने का दम भरा, क्योंकि दोस्तों इन सब में एक बात समान थी और वह थी त्याग की भावना। जहां प्रेम की परिभाषा में निस्वार्थ भावना होती है, जहां अपेक्षाएं नहीं होती, वहीं त्याग की भावना जन्म लेती है। दोस्तों, हर प्रेम कहानी में त्याग नहीं होता, क्योंकि त्याग के लिए चाहिए पूर्ण समर्पण। त्याग करने वाला व्यक्ति उस पतंगे की तरह होता है जो दिए की लौ के तपन से पीछे नहीं हटता, उसमें समा जाना ही उसके जीवन का त्याग होता है।

दोस्तों, त्याग की सबसे बड़ी परिभाषा तो छुपी होती है माँ के ममत्व में, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपनी संतान के सुख में ही जुटी रहती है। और मनुष्य में ही नहीं, एक छोटे से परिंदे यानी कि एक चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसले तैयार करने से लेकर उनके पंख पसारने तक कितनी कठिनाइयों से गुजरती है। और जब ये छोटा सा परिंदा उड़ना सीख जाता है तो वह उस घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है आसमान में। और अंत में ये चिड़िया यही त्याग का एक और उदाहरण पेश करती है।

श्रोताओं, प्रकृति को ही देखिए। प्रकृति स्वयं समर्पण या त्याग की सुंदर पाठशाला है। सूरज रोज उगता है बिना धन्यवाद मांगे, नदियां अनवरत बहती है बिना रुके, वृक्ष फल और छाया देते हैं बिना ये सोचे कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। और यह प्रकृति का पूर्ण समर्पण ही तो है जो जीवन को निरंतर गतिमान बनाए रखता है। त्याग करने वाला अनेक कठिनाइयों से गुजरकर भी महान बन जाता है। जहां त्याग की भावना होती है, वहां सुख दुख ऐश्वर्य आदि सभी की आहुति भी देनी पड़ सकती है। लेकिन इस भावना से ओतप्रोत व्यक्ति को कभी खुशियों का एक अलग अनुभव प्राप्त होता है जो उसे कोई नहीं समझ सकता।

श्रोताओं, अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं का दमन करना त्याग का एक प्रारूप है, लेकिन पूर्ण रूप से वह त्याग नहीं है। त्याग वहाँ होता है जहाँ कुछ लेने की अपेक्षा नहीं होती, जहाँ अहंकार और स्वार्थ नहीं छुपा होता। मसलन जैसे मीरा की भक्ति भी त्याग से परिपूर्ण थी। कृष्ण से प्रेम करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को एक लक्ष्य मान लिया था। त्याग में ही प्रेम छिपा है। जहाँ प्रेम की भावना मन में होती है, वहीं त्याग संभव हो पाता है।

श्रोताओं, आज के स्वार्थ तुल्य समय में समर्पण दुर्लभ जरूर है, पर इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि हम अपने कार्य में ईमानदारी, अपने संबंधों में संवेदना और जीवन में उद्देश्य के प्रति समर्पण जगा लें तो समाज स्वयं ही सुधार हो जाएगा। और श्रोताओं, ईश्वर पर विश्वास जरूर रखिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।

प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मिश्रित स्वरों में गायक कुछ चुनिंदा गजलें। पहली गजल सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और जसवंत सिंह की मिलीजुली आवाजों में।

0: श्रोता अभी सुगम संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान। इस कार्यक्रम का विषय रहेगा पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप खेती तो कराई करा हाँ, पर खेती के सागे सागे किसान भाई जी का है पशुपालन भी करा है, और पशुपालन जो है खेती से जुड़ेड़ो ही काम है। आपने खेत में आपने हरियो चारो है या फिर सूखो चारो है, आप खेत से मिले और बीच में आप क्या पशुपालन करा, और पशुओं से भी आप उत्पादन जो दूध को उत्पादन है, अंडा है, ऊन है, तो है उत्पादन जी का मिले रहने बेच के किसान भाई जी का है अच्छो लाभ भी बने मिल जाए। पर आप देखा कि पशुओं ने आप जिको आहार देवा, अपना ज़्यादा जिको पशुपालन में खर्चो हुए वो बने आप जिको आहार देवा, चाहे वो दाणो देवा, चाहे सूखो या हरियो चारो देवा, बीमें ही हुए, पर बिन है जे आप अच्छी तरह ना देवा पूरा जिका पोषक तत्व है वे बने ना मिले, तो आप देखा कि पशु जी का है कई बार बीमार हो जाए एवं उत्पादन भी कम हो जाए, तो बीच में फिर क्या है कि फायदे की जगह किसान भैया नुकसान होने लग जाए अपन ने। तो ई करके पशुओं ने अपन जो आहार देवा वो संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। देखो संतुलित आहार आप भी आहार ने केवा जिका गां सगली तरह का पोषक तत्व जिका पशु ने जरूरी हो गया।

सारा भी मैं होना चाहिए तो भी ना आप के वहाँ संतुलित आहार। तो भी चूँ क्या है कि एक तो पशुओं के अंदर की भांतगी भी कोई कमी पेशी कौन रहे और सागे सागे बीमार भी कौन हुए और उत्पादन जो है वो भी अच्छा रहे और विंग जिकी गुणवत्ता हुए वह भी अच्छी रहे और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन हुए तो भी चूँ फिर क्या है कि आपने विंगा जी का भाव है वह भी अच्छा मिले। अब जहाँ दूध है आप दूध में कई बार आप देखा कि आप डेयरी पर लेके जावे या घरों अपने दूध लेके जाए तो कई बार आप कह देने का आज तो क्या फैट कम आई है तो भाव कम लागू है क्या। तो वह फैट कम आने का मतलब है कि पशु के शरीर में किन की कमी है तो बीसू बिंगी दूध की जी की गुणवत्ता ही वह कम होगी और बीसू आपने भाव जी का कम मिले और फायदो कम हो। तो आज आप आई बात कर सें कि पशुओं ने जो को आप आहार देवा वो भी संतुलित होना चाहिए और संतुलित आहार के माँ किसा किसा पोषक तत्व हो और किसा किसा आहार देने से वे पोषक तत्व जी का पूरा हो जाए। तो इन करके देखो आहार पहली तो आप बात करें आहार की तो आहार देखो एक तो संतुलित आहार हुआ है जिका मान जहाँ भी आप बात करें कि सगली भांत का पोषक तत्व है जहाँ का कार्बोहाइड्रेट है जिके ना आप ऊर्जा कह दें या ताकत भी कह दें इसके अलावा प्रोटीन है वसा है जिका चर्बी बोला आप खनिज लवण है विटामिन है सगला जिका है अच्छी और पूरी मात्रा में होनी चाहिए इन आप के संतुलित आहार। दूसरो आहार हुआ वो हुआ जीवन निर्वाह आहार। तो इन में क्या है कि पशु ना अपना जितनी ज़रूरत हुए जिसू कि बंगो पेट भर जाए तो इसू क्या है कि पशु ना तो ज़्यादा पशु जिसकी वृद्धि हुए और ना ही बंग बीमार हुए और सागे सागे क्या है कि बंग कोई बीच उत्पादन भी आपने घणों ज़्यादा कौन मिले तो वो हुए जीवन निर्वाह आहार। इसके अलावा उत्पादन आहार हुए तो बिंग में क्या जिका पशुओं से अपने उत्पादकता मिले जहाँ दूध है ऊन है अंडा है तो अन्य पशुओं ने अपन अलग से आहार देने की जरूरत है जिसमें कह के बांग उत्पादन जो का वो अच्छा रहे। बीम बाद में फिर बात करें आप प्रजनन आहार की तो पशु जद गाभिन हुए तो बी टाइम आप अपने आहार देवा तो बीसू कह कि वे बीमार ना रहे और सागे सागे कह कि की भांत की कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए तो बी टाइम आप जो आहार देवा बिना आप बोलो प्रजनन आहार। तब आप बात करें जिका जरूरी पोषक तत्व है बांगी तो देखो जिका पशु है बंगमा कार्बोहाइड्रेट है वो बने ज़्यादा रूप में बने चाहिए हुए तो जिके अनाज है या फिर चारों है तो बिंग में कार्बोहाइड्रेट की जिकी मात्रा है वह ज़्यादा हुए इस पशुओं ने अच्छी ताकत मिले और सागे सागे के आपने जिकी पशुओं के अंदर चर्बी हुए वसा जिकी हुए और सागे सागे प्रोटीन है अन्य पचाने में भी वो बहुत मदद करे है और दूध गमा वसा की जिकी मात्रा है वह भी ज़्यादा हो जाए। जो कार्बोहाइड्रेट की कमी हुए तो दूध गमा वसा की मात्रा जी अभी आप बात करी कि फैट कम आवे फिर भाव भी इसमें कम मिल सी तो आ भी होनी बहुत ही जरूरी है। बात करें किसान भाइयों दूसरों जो को पोषक तत्व है जिसका नाम है वसा तो इसमें भी पशुओं ने ताकत मिले और सागे सागे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2.5 गुना ज़्यादा ताकत जिखी है वह वसा गमा हुए इसमें पशुओं का जिका अंग हुए वे बिल्कुल अच्छा रहे ताकतवर रहे और सागे सागे पशुओं को जो को शरीर को तापमान है वो भी नियंत्रण में रहे और इसमें पशुओं की जिकी पाचन क्षमता है वह भी बहुत ज़्यादा हो जाए। प्रोटीन की बात करें किसान भाइयों तो प्रोटीन जिका है वह अपने शरीर में कोशिकार जिके उत्तक है जिका ना अपना बोल दें कि सेल कम हो गया तो वह सेल जिका है वह प्रोटीन से बने और प्रोटीन खातर आपने कोई दाला है बांगे छिलका है या फिर दाल वाली फसल को चारों है या फिर तेल वाली फसल आगे जिकी खड़ हुए तो बंग माँ प्रोटीन खूब मात्रा में हुए तो जहाँ छोटा जिका बछड़ा है बंगी जिकी शरीर की वृद्धि है बिंग खातर और दूध का अच्छा उत्पादन खातर और कई भावंतगी जिकी बीमारियाँ हैं बांसु बचाव खातर भी प्रोटीन जी को बहुत ही जरूरी है। तो इन करके पशुओं में प्रोटीन को भी विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों सागे सागे आप बात करांगा खनिज लवण की भी तो पशुओं में मुख्य रूप से अगर आप देखा तो 15 तरह का जिका खनिज तत्व बांगी आवश्यकता होवे तो इन में जिकी ज़्यादा जरूरत वाला जिका खनिज तत्व है तो वे जहाँ कैल्शियम है पोटासियम है फास्फोरस है सोडियम है क्लोरीन है मैग्नीशियम सल्फर है जिका खनिज तत्व है आंगी पशुओं ने ज़्यादा जरूरत है। तो इसके अलावा जिका गौण पोषक तत्व हुआ जिका कम जरूरत हुआ जहाँ आयरन है कॉपर है और मैग्नीज है जिंक है आयोडीन है सिलिकॉन है ऐ जिका अन आप बोला गौण पोषक तत्व क्योंकि आंगी जी की जरूरत थोड़ी कम होए और ऐ जिका खनिज तत्व है ऐ भी पशुओं के शरीर खातर बहुत ही जरूरी होए पशुओं के जी की हड्डियाँ है या फिर दांत है तो बन अच्छा और स्वस्थ बनाने खातर खनिज की जी की बहुत ही जरूरत पड़े। तो ये करके खनिज तत्वों में विशेष ध्यान रखा और खनिज तत्व कमी हो जाए तो जिकी आपने खून वाली जिकी कोशिका हुआ है जिका खून जिका सेल्स बने तो वह भी कम हो जाए तो बंगा बनाने में भी वो बहुत सारो योगदान

0: हुए। और सागे सागे जी का खनिज तत्व है, अपने दूध की मात्रा और गुणवत्ता है, बिना भी अच्छी करे और बिना ज़्यादा बढ़ावे। और सागे सागे पशुओं ने भांत भांत की जी की बीमारी है, बांशु भी पशुओं को बचाव करे। किसान भाइयों के सागे बात करा विटामिन की, आपा तो पशुओं में विटामिन की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो पशुओं ने आप कई बार देखा कि भांत भांत की जी की बीमारियाँ लाग जाए। तो यहीं करके कोई भी भांत को जी को विटामिन है बिंगी कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन की कमी हो जाए तो आप देखा कि पशुओं की आँखें मुँह पानी आने लाग जाए, खांसी हो जाए पशुओं ने, नमूनियों भी हो जाए कई बारी। और सागे सागे आप देखा कि पशुओं में जी को है रतौंधी या अंधोपन भी आने लाग जाए, तो ऐ जी का लक्षण है विटामिन की कमी का हुए। और इस अलावा कई बारी आप देखा कि पशु जी का उम्र दराज जी का पशु अपनी हड्डियाँ मुड़न लाग जाए, हड्डी टूट जाए कई बारी, और कई बारी देखा जोड़ा में सूजन भी आ जाए, तो भंग में विटामिन की कमी हुए। तो इन करके भावी आपने पूरी करनी चाहिए। किसान भाइयों अब आप बात करांगा पानी की। देखो पानी जिको है आप जिकी अभी आप सगला पोषक तत्वों की जिकी बात करिए, मैं जे 10 पीसों ले गए और 50% तय कम भी हो जाए नहीं तो भी क्या पशु जीवित रेस के है। जी आप बात करिए कि जिको जीवन निर्वाह आहार है तो बिंग माँ पोषक तत्व कम हो गए तो बिंग शू भी क्या पशु जीवित रेस के है। पर पानी माँ जिका जानकार है वह बतावे है कि 10 पीसा ही कमी हो जाए तो पशु की मौत हो सके। तो इन करके पानी को आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें और पशुओं ने पानी जिको है बने बंगे जरूरत के हिसाब से अपन देना चाहिए। बंगे शरीर को वजन कितो है या फिर वो एक पशु दूध देने वालों है या बिना दूध देने वालों पशु है, तो इन हिसाब से बंगे क्या है और मौसम के हिसाब से भी। और आजकल के दिनों की बात करें तो अब देखो किसान भाइयों गर्मी जी की है वह बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो पशुओं ने दिन में अपन के 6-7 बारी पानी बने पियाना चाहिए। और पानी जो है साफ़ सुथरा और स्वच्छ पानी होना चाहिए जिसमें क्या कि पशुओं में पानी की कमी ना हो। और पानी की कमी होने से क्या कि पशुओं में देखो उत्पादन की मात्रा तो कम हुई हुए और पशु बीमार बहुत जल्दी हुए। और वह बीमारी फिर क्या कि आपने ठीक करने में भी हमें बहुत खर्चो लगे और पशु की कई बारी तो मौत भी हो जाए, तो वो खर्चो लागड़ो भी आपनों बेकार हो जाए। तो ये करके पानी को आप विशेष रूप से अपने ध्यान रखना चाहिए। और इस अलावा आहार का माँ देखो आहार में पोषक तत्व जिका वह अच्छी मात्रा में और उचित मात्रा में होना चाहिए और भोजन जिको है वो पाचक होना चाहिए और सागे सागे भोजन जिको है स्वादिष्ट भी होना चाहिए जिको पशु भी ने क्या चाव छू खा ले। और इन सागे सागे जिका अपना लवण है तो लूण को डलो आप कि अपना कोई ठाण है या फिर पशु जठे चरे तो बटे कोई लूण को डलो रख दें तो बीच में क्या कि पशु बिना चारे के सागे सागे बिना चाटता भी रहे, तो बीच में क्या कि एक तो जिका लवण है बंगी भी कमी को नहीं होवे और सागे सागे के कि पशु जिको है वो चारों बहुत चाप छू खासी और पाचन भी बिंग अच्छो हो सी। तो किसान भाइयों इस तरह आप जो पशुओं ने आहार देवा तो वो बिल्कुल संतुलित आप और पूरा पोषक तत्व वालों देवा आप अच्छी तरह, तो जिसमें क्या कि पशु जिका है अपना भी एकदम स्वस्थ रहे बन कोई बीमारी नहीं लगे और सागे सागे बंग जो उत्पादन है वो भी पूरा रहे और उत्पादन की जिकी गुणवत्ता है किसान भाइयों वह पूरी रहनी बहुत ही जरूरी है। तो यहीं करके बाँ खातर बंग में पोषक तत्व है जिका वह पूरा होना चाहिए और वह सगला पोषक तत्व आप आहार जिको देवा बांसवी पशुओं ने मिले। तो यहीं करके हमेशा ही आप पशुओं ने अच्छी तरह जानकारी ले गए और जो संतुलित आहार है वो ही अपन पशुओं ने देना चाहिए। तो अब चला राम राम सा राम राम।
1: श्रोता अभी खेत कल्याण कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने

0: अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मानसिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के दो केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को अंकिता अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मैनो गर्मी का मौसम तो आ ही चुका है और गर्मी बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो हम हर मौसम में अपने चेहरे का ध्यान बखूबी रखते हैं, लेकिन अक्सर हम हाथ और पैरों की देखभाल पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण हाथ और पैरों की त्वचा ड्राई और खुरदरी हो जाती है। गर्मियों के मौसम में हाथ और पैरों का ध्यान ना रखने के कारण उन पर बेशुमार टैनिंग

भी हो जाती है, जिस कारण हाथ और पैर की स्किन काफ़ी डल नज़र आती है। तो बहनों, आज हम जानेंगे कि कैसे गर्मी के मौसम में भी हाथ और पैरों की स्किन को चमकदार और हेल्दी बनाएं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

सखियों, गर्मी में हाथ और पैरों की त्वचा को मुलायम बनाए रखने के लिए और धूप के कारण होने वाली ड्राइनेस को रोकने के लिए लाइट और नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें। हाथों और पैरों को धूप की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए SPF 30 या इससे ज़्यादा की सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। हाथ और पैरों के गर्मियों के मौसम में सप्ताह में कम से कम एक बार स्क्रब जरूर करें, इससे वह चमकदार और साफ़ रहेंगे। आजकल पार्लर में पेडीक्योर और मैनीक्योर के ज़रिए हाथ और पैरों को साफ़ किया जाता है, लेकिन आप पार्लर के खर्चों से बचने के लिए घर पर ही चीनी और शहद से स्किन को हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट कर सकती हैं। गर्मियों में नाखून के मैल फंस जाती है, इसलिए नियमित रूप से हाथ और पैरों के नाखून काटें। पसीने से बचने के लिए नायलॉन के सॉक्स नहीं पहने, कॉटन के सॉक्स ही पहने। सप्ताह में एक बार हाइड्रेटिंग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसके लिए एलोवेरा और गुलाब जल का उपयोग कर सकती हैं। सबसे अहम बात कि आप हाइड्रेट रहें, इसके लिए आप पानी खूब पिएं और सीजनल फ्रूट जूस, नारियल पानी का भी सेवन अधिक से अधिक करें। सोने से पहले या फिर कहीं आप बाहर से आए हों तो हाथ पैरों को अच्छे से धोएं और फिर उन्हें किसी भी मसाज ऑयल जैसे नारियल का तेल या फिर किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से मसाज करें। इससे आपके कुछ ही दिनों में फ़र्क साफ नज़र आने लगेगा। टैनिंग हटाने के लिए नींबू और शहद का उपयोग कर सकती हैं। घरेलू पैक जैसे बेसन, हल्दी, दही, मलाई और नींबू के मिश्रण को सप्ताह में एक बार हाथ पैरों में अवश्य लगाएं और इस तरह बहनों आप घर पर ही गर्मी के मौसम में कर सकती हैं हाथ और पैरों की देखभाल। और इसी के साथ आनंद लीजिए एक और गीत का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, अब हम सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वार्ताकार है पूनम कुमावत से सुमन कंवर की बातचीत।
5: नमस्कार श्रोताओ। श्रोताओ, सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट एक ऐसी विधा है जो इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रही है। पॉडकास्ट में काम करने वाली एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आप हैं पूनम कुमावत जी। आज अपने इस प्रोग्राम में पूनम जी से बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत इन्होंने की, किस तरह के ये पॉडकास्ट करती हैं। तो पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
6: थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।
5: जी पूनम जी, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आपने पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे की, सोशल मीडिया पर आने का इस रूप में आपने कब सोचा?
6: दरअसल मैम, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ एंड मैं नीट की प्रिपरेशन करवाती हूँ।
5: जी,
6: हमारे पॉडकास्ट का मेन एजेंडा ये था कि हमारे एरिया की जितनी भी बेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बेस्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो उन एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपने लाइफ में सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। क्योंकि समझदार उसे कोई बोला जाता है जो दूसरों के अनुभव से ही चीज़ों को सीखता है, जानता है, समझता है और सफल होता है।
5: जी, आपको याद आता है आपका पहला पॉडकास्ट किससे

0: किया आपने?
1: जी, मैंने मेरा पहला पॉडकास्ट अपनी मातृभाषा में ही किया था, बागड़ी में ही किया था, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैं पॉडकास्ट लेने वाली थी तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम अपनी मातृभाषा में, बागड़ी भाषा में करेंगे। और वो मेरे लिए लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि क्योंकि लगभग इंग्लिश और हिंदी में ही पूरा कम्युनिकेशन रहता है, और उस दिन मेरे को बड़ा ही प्राउड फील हुआ कि मैं बागड़ी भाषा में, उसमें मैंने पॉडकास्ट लिया और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई।
0: जी पूनम जी, थोड़ा और पीछे चलते हैं
1: जी
0: और शुरुआत करते हैं, कहाँ पर आपकी पैदाइश हुई और कहाँ से आपने अपनी स्टडी जो है कंप्लीट की,
1: जी
0: स्कूलिंग कहाँ से,
1: जी
0: इसके बारे में हमें बताएं।
1: मैम, मेरा जो पैतृक गांव है दादाजी का, वो है बिरकाली नोर के पास,
0: जी
1: ठीक है। वहाँ पे मेरे पापा 6 भाई थे, उनमें से एक टीचर बने। मम्मी जो है नेशनल प्लेयर रहे हैं हॉकी के।
0: जी
1: तो मेरी शुरुआती जो शिक्षा थी वो हनुमानगढ़ से ही रही, लेकिन फिर मैंने आगे जो मेरी MSc है वो वनस्थली से की। उसके बाद में मैं एज अ GRF मैंने काम किया नोएडा के अंदर, वहाँ पे सर्विक्स कैंसर पे मैं एज अ GRF वहाँ पे वर्क किया।
0: जी
1: पापा से सुना था कि एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक टीचर एक बच्चे की लाइफ को ही नहीं सेट करता, वो आने वाली 7 पीढ़ियों को भी सेट करता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो मुझे ये बात बड़ी इंस्पिरेशन वाली लगी, और मैं मेरे पापा को अपना आइडल मानते हुए, और मेरे को ऐसे था कि मैं भी पापा की तरह ही टीचर बनूंगी और बच्चों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को संवारने में हेल्प करूंगी।
0: जी
1: मैंने ऐसा किया भी और कर भी रही हूँ, लेकिन मीनवाइल मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को यूँ लगता है कि एग्ज़ाम एक जंग है, और अगर उसके अंदर हम जीत गए तो ठीक, नहीं तो हमारी लाइफ स्पॉइल है, ख़त्म हो गई। तो इसीलिए मेरे को ऐसे लगा कि नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर आप पास हो गए वही सफलता नहीं है। सफलता को तय करने के लिए कई सारे पैमाने होते हैं। अगर
0: जी
1: आप में कोई आर्ट है तो उसको आप निखार सकते हैं, आप अपने
0: बिल्कुल
1: आप को और अच्छे से संवार सकते हैं। एक रास्ता बंद हो गया इसका मतलब नहीं है सारे बंद हो गए हैं। फिर मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की, और ऐसे हमारे यहाँ के लोकल हीरोज जो बड़े ही स्ट्रगल करके, संघर्ष करके जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं, उनकी कहानियां मैंने हमारे चैनल पे बतानी स्टार्ट की।
0: जी तो आप हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में पॉडकास्ट आप
1: जी
0: करते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जी
1: मेन तो हमारा राजस्थानी भाषा में ही पॉडकास्ट रहता है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जो बोलने में कंफर्टेबल होती है, तो हम उनके साथ हिंदी में भी करते हैं पॉडकास्ट।
0: जी यानी राजस्थानी भाषा जो है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से आप प्रमोट भी कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, हमारी मातृभाषा है और इसको बोलते हुए हमें बड़ा ही प्राउड फील होता है और बड़ा मज़ा आता है। मैम, मैं सही बोलूँ तो अपनी ही भाषा में अपने ही लोगों से बात करते हुए एक अलग ही खुशी होती है, और वो खुशी का पैमाना जितने यहाँ के श्रोता हैं वो अपने जिस तरीके से हमें प्यार कर रहे हैं, हमें मान सम्मान दे रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि उनके दिलों तक हमारी बातें पहुँच रही है।
0: जी पूनम जी, किस तरह की कठिनाइयाँ आईं जब आपने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की?
1: मैम, कठिनाइयाँ तो आप कुछ भी स्टार्ट करें सब में ही आती हैं।
0: बिल्कुल
1: सब कुछ नया था हमारा, एज ए हॉबी के तौर पे ये स्टार्ट हुई। सेटअप की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, कैमराज, माइक, मतलब बैकग्राउंड साउंड, इन सब की, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन इस सोशल मीडिया फील्ड से बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो ये इनिशियली प्रॉब्लम्स थी जो हमने कवर की, बहुत कुछ गलतियां कर करके सीखे और जितनी गलतियां की उतने ही निखरते गए।
0: जी तो जो आपका परिवार है
1: जी
0: वो किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? महिला होने के नाते मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब हमें कई स्तर पर काम करना होता है, हमें घर परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाहर जाकर भी हमें
1: जी
0: काम
1: जी
0: करना होता है, तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो
1: बिल्कुल,
0: परिवार किस तरह से कर रहा है आपका?
1: ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे मतलब लकीएस्ट गर्ल हूँ कि मुझे मेरे इन लॉज की जो फैमिली मिली है वो ठीक उतनी ही सपोर्ट करती है जितनी मेरे पेरेंट्स करते हैं। या सही बोलूँ तो दोनों में कंपटीशन है कौन कितना सपोर्ट करेगा, और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे चारों माँ बाप मुझे रोज़ दिखते हैं, रोज़ मिलते हैं, मेरे बच्चों को संभालते हैं। मेरे जेठानी भी हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं फैमिली हाउस होल्ड वर्क में, और इन लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे संभाल भी रहे हैं, और मतलब मेरे हर एक फील्ड में मेरे को हमेशा मोटिवेट करते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि तुम करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है बस वो करो, लेकिन नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और नीयत अच्छी की जहाँ हमने बात की, वहाँ पर घर परिवार में ये भी होता है कि घर में जब सब लोग मिलकर बैठते हैं तो कि हाँ एक अच्छा सा खाना भी होना चाहिए, सब
1: जी
0: लोग मिलकर बैठे हैं तो खाना बनाती हैं आप?
1: बिल्कुल।
0: जी क्या चीज़ है
1: देखो,
0: जो सबसे बढ़िया बना लेती हैं आप?
1: मैं अगर ईमानदारी से आंसर करूं तो मेरी मदर इन लॉ बहुत ही

0: प्यारी हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो,
1: अच्छा
0: ठीक है। उसके बाद में मेरी जेठानी है वो मतलब सेकंड नंबर पे, मेरा रैंक आता है घर में बेसिकली थर्ड नंबर पे। तो मेरे लिए खाना बनाना मतलब बिल्कुल ही होता है कि जब भाभी और मम्मी नहीं बनाएंगे तभी मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं उन दोनों के अंडर ऑब्जर्वेशन में मुझे यूँ लगता है मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, कभी आप आओ तो पता चले।
1: बिल्कुल ज़रूर। और ये भी पूनम जी हम जानना चाहेंगे कि कभी जब फुर्सत के पल मिलते हैं
0: जी
1: तो आप क्या करना पसंद करेंगी?
0: मैं जब फुर्सत के पल में होती हूँ तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं ओशो को बहुत प्यार करती हूँ और मैं ओशो को पढ़ती हूँ। उससे भी ज़्यादा अगर मैं कभी भी फ्री होती हूँ और अपने आप के साथ होती हूँ तो उस परमात्मा को याद करती हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
0: जी
1: जो हमारे अंदर से जो है
0: जी
1: अंतरात्मा से जुड़ी होती हैं
0: जी जी
1: और उसकी वजह से हम निखरते हैं, बहुत सारी
0: बिल्कुल
1: चीज़ें हम
0: बिल्कुल
1: सीखते हैं।
0: नहीं बिल्कुल मैम, मैं आपको बताऊं कि जब मेरे को ये बात समझ में आई ना कि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है तो फिर हम बाहर ढूंढ किसको रहे हैं, तो मैंने उस दिन से अपने अंदर ही उसको खोजना स्टार्ट किया और जितना उसके पास जाती जा रही हूँ ऐसा लगता है कि वो मुझे उतना ही ज़्यादा संवारता जा रहा है और बहुत प्यार करता जा रहा है।
1: जी, बहनें जो रेडियो सुनती हैं
0: जी
1: तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप इस मकाम पर पहुंची हैं, तो
0: जी
1: उनके लिए क्या संदेश आप करेंगे?
0: जितनी भी बहनें हैं जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं मैं बस उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ है इसको बहुत प्यार करें अपने आप को। हमारी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी, मेरा रिश्ता ऐसा, मेरा स्वास्थ्य ऐसा, मैं ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मुझे ही ऐसा क्यों दिया। मतलब अगर हम देखें तो हमने पूरे दिन में अपने आप को इतनी ब्लेसिंग देने की जगह इतना कोसना स्टार्ट किया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं चाहे वो वर्किंग में हैं चाहे हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, दोनों अपने अपने लेवल पर बहुत ही ईमानदारी से काम कर रही हैं, बस अपने आप को प्यार करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को प्रेज करना स्टार्ट कर दें। हम किसी और की तारीफ की मोहताज नहीं है, हम हमारे बल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अपने आप को प्रेज करना आना चाहिए, अपने आप की तारीफ करनी आनी चाहिए और अपने आप को खुश रखना आना चाहिए।
1: जी
0: तो आपकी लाइफ कैसे भी हो अपने आप को खुश रखना सीखिए।
1: जी एक सवाल जो मैं करना चाहती हूँ कि
0: जी
1: अगर आपके फील्ड में या कोई आना चाहे महिला,
0: जी
1: तो सबसे पहले उसको क्या सोचना पड़ेगा, पहला कदम उसका क्या होना चाहिए?
0: देखो अगर कोई भी यूथ में या कोई फीमेल पॉडकास्ट फील्ड में अगर आना चाहता है तो उसको मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप जिन भी पर्सनैलिटी का आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होती है मैम कम्युनिकेशन स्किल,
1: बिल्कुल
0: वो बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बातें रखनी आनी चाहिए, अपने शब्दों का चुनाव इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि पढ़ा लिखा डिग्री से नहीं आंका जाता, एक पढ़े लिखे की पहचान होती है उसके शब्दों के चयन से, उसके बोलने के तरीके से और व्यवहार से, और मुझे लगता है व्यवहार शब्दों का सिलेक्शन वो इत्र है जो आपके जाने के बाद में भी महकता है।
1: जी
0: तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए।
1: जी पूनम जी, जैसे जैसे हम ये कहते हैं कि लोग सोशल मीडिया
0: जी
1: पर आने लगे हैं, तो उनका जो जीवन है, उनकी ज़िंदगी है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक एकाकी होने लगी है। फ़ोन में उनकी दुनिया है, लेकिन वो उस फ़ोन से या उस सोशल मीडिया से उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या बुरा असर जो है आपको दिखाई देता है?
0: देखिए मैम, फ़ोन का यूज़ आज अकेला सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी उतना ही कर रहे हैं। बच्चा आज पेरेंट्स को करता हुआ देख रहा है, तो पेरेंट्स ने अपनी विरासत में बच्चों को ये गिफ्ट दिया है। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए शायद जोर आएगा इस चीज़ को, लेकिन सच ये है कि आज मैं बुक पढ़ती हूँ ना तो मेरा बच्चा मुझे देख के एक्टिंग करता है बुक पढ़ने की, ठीक है।
1: बिल्कुल
0: तो आज जो हमने दुनिया बनाई है ना, ये अपने लिए तो बनाई है, साथ में बच्चों को भी गिफ्ट किए, और फिर जब बच्चे उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हम उनका बचपन नहीं देख पाए, उनके साथ खेल नहीं पाए, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, क्योंकि हमने टाइम स्पेंड तो किया है लेकिन सोशल मीडिया के साथ। और देखो जब एक लिविंग थिंग आपके सामने हो और आप नॉन लिविंग थिंग पे टाइम दोगे
1: बिल्कुल
0: तो
1: यही बात मैं आपसे कहना
0: जी,
1: चाह रही
0: तो
1: थी।
0: ऐसे में तो कुछ भी सही नहीं होगा, ना फ्यूचर, ना रिश्ते, ना कैरियर।
1: क्या कदम क्या होना चाहिए?
0: सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूशन किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले एज ए आप पेरेंट सुन रहे हैं तो आपको अपने बच्चे के सामने इन सारी चीज़ों पे पोज लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है। आप उनको नहीं बोल सकते कि आप फ़ोन मत देखो क्योंकि आप खुद देख रहे हो, तो बेटर है कि आप अपने बच्चों के साथ जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चों को भी उनसे पूछें, उनसे इंट्रैक्शन करें। कम्युनिकेशन एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे इन सारे डेविल्स

0: उसको हम हटा सकते।
1: तो स्कूल में किसी तरीके से माहौल बदलना चाहिए, क्योंकि आप टीचर भी हैं
0: जी। स्कूल के अंदर मैम फोन का कोई काम ही नहीं है।
1: बच्चों की मानसिकता पर अगर हम बात करते हैं
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल
1: उन पर टीचर्स को बात करनी चाहिए या की की जा सकती है?
0: बिल्कुल की जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग टीचर को आज के टाइम पे ये चीज़ लगती है कि टीचर मतलब सिलेबस कंप्लीट करवाना, जबकि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। टीचर मतलब पहले एक अच्छा इंसान बनाना। बच्चे को एक अच्छे इंसान के रूप में या तो उसके पेरेंट्स बना सकते हैं या टीचर। बच्चा पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं करता क्योंकि वो उनको फॉर ग्रांटेड कर सकता है, लेकिन टीचर को सुनना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको पढ़ना है उससे। तो यहाँ पे टीचर की मेरे अकॉर्डिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, कि आप अपने स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की नसीहत दें, उनको वो सारे चीजें बताएं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। सिलेबस इज अ सेकेंडरी मेरे अकॉर्डिंग। मैम मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको, जो मैं मेरे बच्चों को बताती हूँ कि ना जितने भी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जो कंपटीशन फील्ड में है, 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि ये उनकी उम्र बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो मैं उनको हमेशा यूँ बोलती हूँ कि तुम्हें अपने आप को 3 डेविल्स से बचाना है, कि 3 डेविल्स ऑफ योर लाइफ। पहला जो डेविल होता है वो उनकी बॉडी में निकलने वाले सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली इनबैलेंस्ड होते हैं, फिजिकली इनबैलेंस्ड होते हैं
1: जी, और इस पर बहुत कम बात की जाती है,
0: बहुत ही कम। मेरे को बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि जब मेरे पास कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आते हैं और वो यूँ बोलते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स तो हमें पढ़ाए नहीं गए थे, ये कह के निकाल दिया गया था कि ये तो कोई ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है, इसको पढ़ने के लिए ये ऐसे लगाए हुए हैं, तुम खुद पढ़ लेना, क्यों ज़रूरत नहीं है? अगर ये ज़रूरत नहीं है तो संभाल के क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इनके बिना भी तो लाइफ पॉसिबल है। ये है मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे डिवाइन ऑर्गन है जहाँ पे सृजन हुआ है लाइफ का,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में हमें एक आइडेंटिटी दी है। अगर ये ऑर्गन्स नहीं डेवलप होते तो हम शायद मेल और फीमेल भी ना होते। तो सबसे पहला जो डेविल मैं मानती हूँ वो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बात ना करके तो बच्चे उसको अपने ही लेवल पे गलत ही समझते हैं। दूसरा डेविल जो इन दिनों बड़ा राक्षस जो आ रहा है वो है ड्रग एडिक्शन। वो स्मोक करते हुए देखते हैं, गालियां बकते हुए देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनको लगता है कि हीरोज ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही अल्कोहल लेते हैं। ये बहुत ही गलत इंस्पिरेशन मिल रही है बच्चों को। डेविल में क्यों बोला गया है, क्योंकि आज अगर कोई ड्रग अडिक्ट कर रहा है ना तो वो अपने साथ के बच्चे को भी कोशिश करेगा कि आप करो, बच्चा बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो उसको साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाएगा, तो बच्चे को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है और वो पीता है, फिर
1: ट्रिगर किया जाता है।
0: और ये दूसरा डेविल है। तीसरा जो डेविल वो है सोशल मीडिया, जिसमें एडिक्शन अगर गलत डायरेक्शन में लग गया तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आज का जो यूथ है वो 90-95% डिस्ट्रैक्टेड है इन 3 डेविल की वजह से।
1: जी बिल्कुल,
0: अगर इन तीनों पे जीत गया तो फिर अब उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता
1: जी। तो ये जिम्मेदारी सबकी बनती है।
0: बिल्कुल, पेरेंट्स को यूं लगता है कि जो हमें नहीं मिला वो हम बच्चों को दें, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपने जो अर्न किया है ना वो बच्चों को दें। आपने अर्न किया है धैर्य, आपने अर्न किया है पेशेंस, आपने अर्न किया है वो संस्कार जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा कर सकती है। आपने अर्न किए हैं अपने बुरे और अच्छे दिनों के अंदर जो मानसिक स्थिति में जो ठहराव आया है वो आपने बच्चे को वो सारी चीज़ें डिलीवर करें ना आप, कि कोई ट्रिगर करे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपको जज करना है। तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। आप उनको ये तो बता देते हो कि भाई गर्ल्स को मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, कि गर्ल्स को संभाल के रखना चाहिए, घर की इज्जत है। तो मैंने एक बार किसी से पूछा क्यों गर्ल्स को इतना क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है? तो कहते हैं गर्ल्स जो होती हैं लड़कियां सोना होती है और सोने को तिजोरी में रखना चाहिए। तो अगर लोहे के समान लड़के को मानोगे तो लोहे को जंग ही लगेगी। तो बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चों को इक्वलेंट इंपॉर्टेंस दें, इक्वलेंट संस्कार दें, और दोनों को बिठा के पेरेंट्स सही और गलत की बातें उनके सामने शेयर करें
1: जी। मैं ये कहूँ कि एक सच्चाई के धरातल पर अगर हम बात करते हैं, यूं तो कहा जाता है कि हाँ महिला और पुरुष जो हैं बराबर हैं
0: जी,
1: अगर आप ईमानदारी से कहें तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति है वो हमारे समाज में कैसी है?
0: मैम ये सोच पे डिपेंड करता है कैसी है। मैं अगर सही बोलूं तो आप दोनों को इक्विवेलेंट कभी रख ही नहीं सकते। सुई की जगह सुई काम आएगी और तलवार की जगह तलवार काम आएगी। मैंने कहा ना बहुत सारे पैमाने यहाँ पे रखने पड़ेंगे। आप एकदम से नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर हैं, नहीं है। दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ बराबर नहीं है, दोनों के लिए कंडीशंस बराबर नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अभी हमारा जो समाज है ना उसको ये बात अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा।

0: दोनों के लिए कंडीशंस बराबर नहीं है, लेकिन दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं. दूसरा, अभी हमारा जो समाज है ना, उसको ये बात अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. उनको लगता है कि हमारे फीमेल काम भी करे और घर को भी संभाले, दोनों को एक साथ करे. देखो, ये चीज़ फैक्ट है, हर जगह देखने को मिलती है. ये थोड़ी सी पार्शियलिटी है और ये मुझे नहीं लगता अभी बहुत जल्दी जाएगी, लेकिन आने वाली जनरेशन में चली जाएगी.
1: लेकिन हम ये कह सकते हैं कि योग्यता के आधार पर अगर हम बात करें
0: जी,
1: तो महिलाएं कहीं भी
0: पीछे नहीं है,
1: पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल भी नहीं है.
1: इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं कि हाँ, जो भी हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं
0: जी
1: उसमें है। बाकी अगर स्वभाव से अगर महिला पुरुष अलग-अलग हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जो
0: नहीं,
1: है चीज़, वो
0: बिल्कुल
1: सबकी खूबसूरती अपनी अपनी जगह जो है वो कायम
0: जी,
1: रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल. और जितनी भी फीमेल्स हैं वो, मतलब देखो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि व्रत करवा चौथ का सिर्फ मर्दों के लिए रखा जाता है, क्योंकि फीमेल खुद इतनी ताकतवर है कि उसके लिए किसी व्रत की जरूरत नहीं होती है. और ये फैक्ट है, जो सृजन कर सकती है ना. बच्चों को बोलती हूँ कि एक आपकी आंख में अगर कचरा चला जाए ना, तो क्या 9 मिनट आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? नहीं.
1: बिल्कुल।
0: एक मदर 9 महीने तक एक पैरासाइट, परजीवी के रूप में पलने वाले बच्चे को रखती है,
1: जी,
0: ठीक है
1: और
0: ना.
1: कहा भी गया ना कि एक बहुत खूबसूरत बात किसी शायरा ने कही है
0: जी
1: कि जिस लम्हा मेरे बच्चे ने माँ कहा मुझे,
0: जी
1: मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई।
0: एग्जैक्टली.
1: जी
0: तो मैं कभी मानती ही नहीं कि फीमेल और मेल कभी बराबर हो सकते हैं, वो कभी हो ही नहीं सकते. ये इक्वलिटी मेरे लिए समझ में ही नहीं आती है. वो कभी मदर का फॉर्म, मदर की डिग्निटी, मदर का पेशेंस, मदर का कॉम्प्रोमाइज़ करना, मदर का हर प्यार से चीज़ों को संभाल लेना, ये पोटेंशियल मेल में नहीं आ सकता. मेल की अपनी अलग पावर है.
1: जी
0: हमारा जो समाज है ना फीमेल के लिए, उसके लिए जितने भी फीमेल्स हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है. तो किसी शायर की ये बातें मुझे याद आती है कि चंद बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, चंद बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा ही घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई. घर
1: बिल्कुल।
0: जिद है उसे हमें पे बिजलियाँ गिराने की, घर जिद है उसे हमें पे बिजलियाँ गिराने की, तो अब हमें भी है जिद यहीं पे आशियाँ बसाने की.
1: जी, बहुत खूब। पूनम जी, आपसे जो इतनी सुंदर बातचीत हमारी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और आकाशवाणी स्टूडियो पधारने के
0: जी,
1: लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच.
2: तो सखियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, विषय था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वार्ताकार थी पूनम कुमावत जी. तो लीजिए बहनों, आप सुनते हैं एक और गीत.

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गई सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: सखियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए कागज की बचत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागज उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृक्ष, जल और ऊर्जा की खपत होती है, जिससे वनों की कटाई और प्रदूषण बढ़ता है। कागज का उपयोग कम करके हम इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। सखियों, आजकल स्कूल में बच्चे कागज की उपयोगिता को ना समझते हुए बहुत कागज वेस्ट करते हैं, लेकिन हम अभिभावकों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को कागज की अहमियत बताते हुए कागज की बचत करवाने में उनकी मदद करें। जैसे मैंने आज के डिजिटल वर्ल्ड में ईमेल, नोट्स लेने वाले ऐप्स और ऑनलाइन फाइलों का उपयोग करके पेपरलेस संस्कृति को बढ़ावा दिया। प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के लिए कागज के दोनों तरफ का उपयोग करना चाहिए। रद्दी कागजों का पुनः उपयोग करें, जैसे नोटपैड या ड्राफ्ट के लिए कागज के खाली हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। पेपर नैपकिन, टॉयलेट पेपर और के बजाय कपड़े के नैपकिन का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग किए गए कागज को फेंकने के बजाय उसे रिसाइकिल के लिए भेजें। ऑफिस और स्कूल में फिजिकल फाइल की जगह डिजिटल शेयरिंग करें। मैंने चर्चा तो

सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं कागज़ की बचत के बारे में। सखियों, पुराने अखबार का उपयोग कई रचनात्मक तरीकों से हम कर सकते हैं। अपने बच्चों को इन्हें शिल्प परियोजनाओं या रैपिंग पेपर के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। इससे न केवल नए कागज़ की आवश्यकता कम होती है, बल्कि उनकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। सखियों, बच्चों को स्कूल के सामान के मामले में सादगी का सिद्धांत सिखाएं। अक्सर बच्चे नई नोटबुक चाहते हैं, जबकि उनकी पुरानी

नोटबुक में अभी बहुत सारे पन्ने बचे होते हैं। इन पन्नों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने से कागज की बर्बादी काफी हद तक रोकी जा सकती है। बच्चों को बाहर ले जाएं और उन्हें प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करने में मदद करें। जब वे पेड़ों की भव्यता देखेंगे और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में उनके महत्व को समझेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से कागज के संरक्षण और पेड़ों को बचाने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि मैंने बच्चों में समझ पैदा करना हमारा ही कर्तव्य है। तो लीजिए बहनों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

मैनू गर्मियों के मौसम में हर किसी को कुल्फ़ी, आइसक्रीम और बर्फ़ के गोले खाना अच्छा लगता है। इनको खाने से पेट को अधिक ठंडक मिलती है, लेकिन बाज़ार में मिलने वाली कुल्फ़ी से होममेड कुल्फ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। जैसे मैनू हम घर पर ही अलग अलग फ्लेवर्स की कुल्फ़ी तैयार कर सकती हैं। जैसे चॉकलेट कुल्फ़ी है तो लो फैट मिल्क से तैयार चॉकलेट कुल्फ़ी टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होती है। ये शुगर फ्री भी होती है। इसको बनाने के लिए 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच शुगर फ्री चॉकलेट लेना और फिर इसमें दूध को मिलाकर गर्म कर ले। ऐसा करने से दूध और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर गाढ़ा होने पर फ्रीजर में रख दें, हो गई चॉकलेट कुल्फ़ी तैयार। इस तरह आम की कुल्फ़ी गर्मियों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसको बनाने के लिए आम के गूदे को प्यूरी बना लें और दूध को उबाल कर आधा होने तक गाढ़ा होने दें। दूध में चीनी, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं और अब इसमें हैवी क्रीम और आम प्यूरी मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिश्रण को कुल्फ़ी के सांचे में डालकर रात भर जमने दें और आनंद लें मैंगो कुल्फ़ी का। मैंने घर पर पिस्ता कुल्फ़ी बनाने के लिए दूध में पिस्ता पेस्ट और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। इससे कुल्फ़ी भी अच्छी ज़्यादा क्रीमी बनती है और इसे जमने के बाद इसका आनंद लें। इस तरह स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी और मिक्स फ्रूट कुल्फ़ी भी आप घर पर आराम से बना सकती हैं। तो बहनों, इसी के साथ अंकिता अरोड़ा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, और आप आनंद लीजिए इस गीत का।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम

0: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की

0: बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

0: नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनते हैं याराना फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की है। अनजान की शब्द रचनाएं और संगीत राजेश रोशन का है। लीजिए सुनते हैं ये गीत।

जहरीला इंसान, जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरू के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

0: श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं शालीमार फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी की शब्द रचनाएं और संगीत आर डी बर्मन का है।
1: कैरेक्टर है ना वफादारी।

लीजिए अब सुनते हैं हवस फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है सावंत कुमार ने और संगीत उषा खन्ना का है।

लीजिए अब सुनते हैं अभिमान फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनहर की मिलीजुली आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है एसटी परमन ने।

ली जब सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मसरू की शब्द रचनाएं और धुन आर डी बर्मन की है।

आए दिन बहार के। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाज़ों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली TVK हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं मुद्दत के लिए पुदुचेरी के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज़ और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से दरामदी महसूल को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वज़ीर-ए-आला जोसेफ विजय की क़यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकानी असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं ई पलानी सामी की क़यादत वाली AIADMK के 22 अराकानी असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। BJP और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वज़ीर-ए-आला ने पेश की थी। आजमूदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज 5वीं मियाद के लिए पुदुचेरी के वज़ीर-ए-आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। उनके साथ BJP के A. नमस्सी वायम और ऑल इंडिया NR

के मल्लादि कृष्णा राव को भी एनडीए सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। लोक निवास में मुनाकिदा एक तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वज़ीर-आला और दो वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, पुदुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर वीपी रामालिंगम, डीएमके के कन्वीनर आर शिवा, कानून साज असेंबली के साबिक स्पीकर आर शिवम और नौ मुंतखब अराकान असेंबली और पार्टी के दिगर ओहदेदारान मौजूद थे। हलफबरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगासामी वज़ीर-आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुदुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरख्वाह कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। ये कदम मग़रिबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदाद पर इन्हिसार कम करके इक़्तिसादी इस्तेहकाम में तआवुन के लिए शहरियों से उनकी अपील से मुताबिकत रखता है। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़ीर-आला ने भी वजीरों, अराकीन असेंबली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल दिया जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं बोर्ड के इम्तहान के नतीजों का ऐलान कर दिया। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तहान 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। ताहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। सरकार ने आज से सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वज़ारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वो मग़रिबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर सोना न खरीदें। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दो तरफा तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फॉर्मों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। अमेरिका के सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल पीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर के साथ दो तरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का ये पहला दौरा होगा। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्व

0: पहला उसका जमाना।
1: क्या बात मेरे शायर,
0: थैंक यू दुनिया।

0: लता मंगेशकर की आवाज में लोफर फिल्म से ये नगमा भी आप सुन रहे थे। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म है अनुरोध।
1: आते जाते खूबसूरत हमारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब सुनिए डॉक्टर महनाज अनवर का तहरीर करदा फीचर, उनवान है आम की बहारें।

ये हिंदुस्तान है जहाँ कई तरह की जबानें बोली जाती हैं। बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं और मौसमों की रंगारंग बहारों के साथ यहाँ के बाशिंदे अपने शब रोज गुजारते हैं। इसी हिंदुस्तान में अगर सब्जियों और तरकारियों की बात की जाए, फलों और फूलों की बात की जाए, दरख्तों और पौधों की बात की जाए, तो दुनिया के दूसरे तमाम हिस्सों के मुकाबले में शायद ही कोई ऐसी सब्जी, फल, फूल या पेड़ होगा जो इस मुल्क की सरजमीन पर न उगता हो, क्योंकि यह मुल्क सख्त तरीन सर्दी का भी देश है और बाज इलाकों में शदीद गर्मी भी यहाँ होती है। अगर बारिश का जायजा लिया जाए तो भी यह मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं है। और इसी मोतदिल आबहवा की जमीन से उगने वाला एक दरख्त ऐसा भी है जो आम, जी हाँ, सिर्फ दो हर्फों पर मबनी लफ्ज आम जैसा लजीज फल

0: आम एक ऐसा जायकेदार फल है जो अपनी अव्वलीन उम्र में तो तुरशी और खट्टे मजे के साथ जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये फल अपनी नौउम्री और जवानी की तरफ बढ़ता जाता है उसका सख्त बदन मुलायम और मजा मीठा होता जाता है। और ये अपनी उम्र की हर मंजिल पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटे और कच्चे आम को कैरी कहा जाता है, जिसकी लोग खटाई बनाते हैं, अचार डालते हैं और तो और सख्त गर्मी और लू के मौसम में कच्चे आम को आग में पकाकर उसका शरबत बनाते हैं, जो गर्मी और लू से बचने में दवा का काम करता है। और हिंदुस्तानी दस्तरखान पर अगर आम का अचार न हो तो खाने का मजा फीका रहता है। और अमरस, भला इस अमरस को कौन पसंद नहीं करता, लेकिन सही मानों में आम की अहमियत और फलों में उसकी इंफरादी पहचान तभी खुलकर सामने आती है जब ये फल अपनी नौखेजी की उम्र पार करके ऐन जवानी बल्कि पुख्ता उम्र की हुदूद में दाखिल होता है, तो ये फलों का बादशाह बनकर लोगों की जबान के मजे का मरकज और उनके खाने के शौक का निशाना बन जाता है। आम जैसे फल की मिठास कभी कभी कुछ अदीबों और शायरों को इतनी भा जाती है गोया उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज आम की खुशबू और उसकी मिठास में रचे बसे हों। इसी आम के बारे में जब ख्वाजा हसन सानी निजामी से पूछा गया तो वो कुछ इस तरह गोया हुए।
1: सर पूछिए तो जैसे कि लोग कहते हैं पुराने जबान में अगर मैं कहूँ तो कहूँ राजा आम, आम जो है राजा फल है और उर्दू में शाह फल या शाही फल कहा जाएगा इसको, और ये वो फल है कि गरीबों की गरीबों की गिजा भी है और फल भी है, रोटी खा लेते थे।

0: आम यूं तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाके में कुदरत का बहुत बड़ा दिया है, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और मगरबी बंगाल के आमों का भी अपना खास जायका और शक्ल होती है, जिनमें मुर्शिदाबाद का मालदा आम मशरकी हिंदुस्तान में काफी पसंद किया जाता है। इस सिलसिले में जब मशहूर अदीब और शायर जनाब गुलजार देहली से पूछा गया तो उन्होंने अपने मुनफरिद लहजे में आम के सिलसिले में यूं इजहार ख्याल किया।
1: आम एक वाहिद ऐसा फल है कि जो सारी दुनिया में हिंदुस्तान से जाता है। अब वो लोग पैदा करते हैं और बागात में भी उगने लगा है गैर ममालिक में, अमरीका तक में इसकी काश्त होने लगी, लेकिन उसमें भी उत्तर प्रदेश के हमारे ब्रज भूमि मेरठ मुजफ्फरनगर बुलंदशहर से मुरादाबाद से लेके और मलिहाबाद फैजाबाद तक मशरकी यूपी तक बागात ही बागात हैं आम के। उसका जो जायका है, लज्जत है, वो उत्तर प्रदेश यूपी के आमों में है। आम तो जनूबी हिंद में भी पैदा होने लगे, महाराष्ट्र में भी पैदा होने लगे, बंगाल तक में, आप सोचिए बंगाल तक में एक आम होता है जिसको मलदैया, बड़ा आम होता है, एक किलो का एक तोड़ लीजिए। छोटे मीठे आम भी होते हैं मगर ये जरा दरमियाना है, ना मीठा ना खट्टा। अब बंबई में आम तो होता है अल्फांजो, मगर इतना महंगा इतना होता है कि कॉमन मैन के दस्तरस से बाहर है। जो आम हिंदुस्तान में मकबूल आम है उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, तोता है, और क्या नाम उसका।

0: रटौल है, समर बहिष्ठ है, और कलमी है, और देसी चुसैया चूसने वाला आम है। वैसे तो इसके 130 किस्में हैं, लेकिन ये जो आम मैंने बताया ये बहुत मारूफ और मकबूल है। आम की ये खूबी ये है कि खाते चले जाइए इंशरा बढ़ता जाएगा। खाते गालिब से किसी ने पूछा कि साहब आप आम की क्या तारीफ समझते हैं, आम कौन सा अच्छा? कहने के वो दो चीज़ें आम की खूबी हैं, एक तो ज्यादा हो और एक मीठा हो। तो आम के टब भर लीजिए, जब तक आदमी बहुत ही बूढ़ा नहीं हो गया या हाजमे ने जवाब नहीं दे गया है, 10-15 आम किसी को खिला दीजिए। और जवानी में लोग दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच किलो आम खा जाते, खाने की ज़रूरत ही नहीं, रोटी खाएंगे ही नहीं, उस दूध पी लिया, लस्सी पी ली वगैरह। तो आम की सबसे बड़ी खूबी है कि हाजिम भी है। कोई फल ऐसा नहीं है जो 40-50 रुपए से कम हो। आज भी आप आम कहीं ले लीजिए, 18 रुपए और 20 रुपए और 22 रुपए का भी मिल जाएगा और 50 रुपए का भी मिल जाएगा। ये भी आम की खूबी है। तो आम की पहचान चूंकि बच्चे बच्चे को है, हमारे हर सांस में, नफस में, रंग रूप में, खून में, हमारे आबो हवा में, मट्टी में, तखमीर में, जमीर में इतना समाया हुआ है सदियों से कि वो हिंदुस्तान की अलामत बन गया।
1: आम एक ऐसा फल है जिसका ताल्लुक हिंदुस्तानी तहजीब, तारीख और मजहबी रस्म रिवाज से तहजीब के अव्वलीन दौर से वाबस्ता है। पहली और दूसरी सदी ईस्वी के मुजस्मों और मूर्तियों में आमों की डालियों और आम को अंबिका देवी के साथ देखा जा सकता है। अंबिका एक देवी है जो हिंदू और जैन मजाहिब में पूजी जाती है। आमों की काश्त कब और कहां से शुरू हुई इसका कतई हवाला कहीं नहीं मिलता। अलबत्ता इतना जरूर है कि तारीख के हवालों में 3री सदी कबल मसीह में जब अहर मौर्या में यूनान का बादशाह सिकंदर हिंदुस्तान आया था तो उसने आम का जिक्र किया था। आम को दुनिया के तमाम फलों के मुकाबले में इस वजह से भी अव्वलियत हासिल है कि कंधार के तरबूज, अरब के खजूर और अंगूर के मुकाबले में हिंदुस्तान में आमों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। आम की किस्मों का जिक्र करते हुए पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोम सिंह ने इंस्टीट्यूट की ताजा तरीन खिदमात का एक बार फिर जिक्र किया।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मैं अध्यक्ष हूँ और वैसे मूल रूप से मैं आम पर ही काम करता हूँ, और ये जो संस्थान है अपने आम के काम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। पूसा संस्थान में जो पहली संकर किस्म निकली थी मल्लिका 1971 में, और दूसरी किस्म निकली थी आम्रपाली 79 के लिए, 89 के लिए निकली थी, तो ये दो किस्में बड़ी अच्छी किस्में हैं। और आम्रपाली में तो हर साल फल आते हैं, इसका पौधा इतना छोटा है कि अब आम के पौधे से पौधे की दूरी अब 2.5 मीटर भी रखें, 2.5 से लेकर 3 मीटर तक भी रखें, तो आप 1 हेक्टेयर से 20 से लेकर 22 टन आम ले सकते हैं, जबकि दशहरी में आपको 7-8 टन से ज्यादा नहीं मिलता। अभी दो किस्में हमने और जो विकसित किए 2002 में, पूसा अर्णिमा है और दूसरी किस्म का नाम पूसा सूर्या है। इन दोनों किस्में ये हर साल फल देती हैं, और बाहर से जो छिलका है वो लाल रंग का है और बड़ी अच्छी किस्म है, और जो पूसा अर्णिमा है पकने के बाद में 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होती, और यदि आपने पेड़ से तोड़ करके रख दी पकाने के लिए तो 20 से लेकर 25 दिन तक खराब नहीं होती। भाइयों ने देखा होगा कि जो दशहरी है पकने के बाद जो 3रे दिन ही वो अंदर से उसका गूदा खराब होने लगता है, तो ये इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है या जो रखने का समय है बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको विदेशों में भेज सकते हैं, बड़ी अच्छी किस्म है। इसी तरह से सूर्या है, सूर्या का जो वजन है एक फल का वजन औसत वजन करीब 270 ग्राम, जो 270 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम तक होता है, बहुत बड़ा फल होता है वो भी, जो ना काफ़ी दिन तक रुकती है और हर साल फल देती है, क्योंकि अब वो पुराने दिन चले गए कि भाई आम में तो अब 2 साल में एक बार ही फल आएगा, तो किसान को आमदनी हर साल चाहिए, और हर साल के लिए हमारे जो पूसा की 3 किस्में हैं मैंने अभी बताई, एक तो आम्रपाली जो हर साल फल देती है, और एक पूसा अर्णिमा, ये एक संकर किस्म है, एक पूसा सूर्या, ये 3 किस्में हैं जो आपको हर साल फल देंगी।
1: आम का जिक्र उर्दू अदब और हिंदी शायरी में भी खूब मिलता है। कालिदास की शायरी में आम का जिक्र बार बार

इस सनती जिंदगी और ऊंची ऊंची इमारतों के जंगल में हमें आम के दरख्तों और आम के बागात के उस मंजर को याद रखना चाहिए जब जबान से ये शेर बेअख्तियार निकलता है कि आम के दरख्तों पर बौर उग रहा होगा, छुट्टियां अगर होती घर को हो लिए होते।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महनाज अनवर का तरतीब दिया हुआ फीचर, उनवान था आम की बहारें। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। आइए अब सुनते हैं मिले जुले फिल्मी नगमे।

आपने सुना जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को। ये नगमा हमने आपको सुनवाया सत्यमेव जयते 2 फिल्म से। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं गदर 2 फिल्म का नगमा। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और नीति मोहन की।

0: दोनों में अभी आपने सुने, पहले आपने सुना श्रेया घोषाल के साथ तौची रैना को शोर इन द सिटी फिल्म में, उसके बाद आप सुन रहे थे सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, फिल्म का नाम था हम तुम। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश हमराज फिल्म से है, आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना, ये नगमा फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नज़र कर रहे हैं, लीजिए सुनिए। अभिजीत और साथियों को, फिल्म का नाम है बादशाह।

अभिजीत और साथियों की आवाजों में नगमा भी आपने बादशाह फिल्म से सुना। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अब से चंद ही लम्हों के बाद खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय ने क्यादत वाली टीवी की हुकूमत ने रियासती असम्बली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 3 रोज़ा चीन दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यूवेरी मुसवेनी ने रिकॉर्ड 7वीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीर आला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असम्बली में 144 अराकीन असम्बली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडप्पडी पलानी सामी की क्यादत वाले 22 AIADM के अराकीन असम्बली ने उसके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असम्बली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। SP वेलोमनी की क्यादत वाले AIADMK ने हुकूमत की हिमायत की है। आज मुद्दाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के बानी एन रंगासामी स्वामी को आज पांचवी मियाद के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो एक रिकॉर्ड है। उनके साथ बीजेपी के ए नम्मी स्वामी और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णा राव को भी NDA सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। लोक निवास में मुनक़दा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और 2 वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर VP रामा लिंगम, DMK के कन्वीनर R शिवा, कानून साज असेंबली के साबिक स्पीकर R सिल्वम और 9 मुंतखब अराकीन असेंबली और पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हलफबरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंदरूनी मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने

काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरख्वाह कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। जराए के मुताबिक वजीर आजम के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदाद पर इन्हिसार कम करके इकतसादी इस्तेहकाम में ताउन के लिए शहरियों से उनकी अपील से मुताबिकत रखता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराह सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दो तरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत भी करेंगे। इम्कान है कि तजारत को इस बात बातचीत की अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिलमुशाफा मीटिंग होगी और ये 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वजराए आला ने भी वजीरों, अराकीन असम्बली और आवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। युगांडा के सदर युवेरी मुसविनी ने रिकॉर्ड 7वीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। जनवरी के महीने में हुए इंतखाबात में अपनी जबरदस्त जीत के बाद युवेरी मुसविनी की 40 साल मुद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। अफ्रीका में अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक फाइज रहने वाले रहनुमाओं में से एक युवेरी मुसविनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड में अपने ओहदे का हलफ लिया। इस दौरान हजारों शुरका मौजूद थे। मुसविनी ने 71% वोट हासिल किए हैं। अपोजिशन लीडर और फनकार बोबी वाइन, जिनका असल नाम रॉबर्ट कायागुलानी है, ने 25% वोट हासिल किए। जनवरी में हुए इंतखाबात के दौरान मुल्क भर में इंटरनेट बंद रहा और अपोजिशन को डराने, धमकाने और अगवा करने की रिपोर्ट्स आती रही हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत में 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। ताहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेसेज समेत इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक इजाफा कर दिया है। प्लाटिनम पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सानवी तालीम की मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं बोर्ड के इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिख कर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तिहान 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली की खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को फ्रेज मैगनेना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसअत देने के मकसद से दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फॉर्मों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। जीत के लिए 169 रन के निशाने के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद 14 ओवर और 5 गेंदों में महज 86 रन ही बना सकी। पंजाब

0: सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजा करने का फैसला किया है ताकि दफाई अफवाज में उनके मियाद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। इस सिलसिले में मुकर्रा वक्त के अंदर तरीक़ेकार और फ्रेमवर्क को कतई शक्ल देने की गर्ज से सीनियर सिविल और पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक आला इख्तियारियाती कमेटी तश्कील दी गई है। वजीर आला भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को रिजर्वेशन के फायदे फराहम करने के लिए उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगा स्वामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुई तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के लिए इकदाम तेज कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने तीन रोजा चीन दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। यूवेरी मुसविनी ने रिकॉर्ड सातवीं मुद्दत के लिए युगांडा के सदर के ओहदे का हलफ लिया। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से अभी तक आप उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा श्रोताओं को नमस्कार। आज राजेंद्र शर्मा की ओर से श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता है, आज बुधवार है और आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आपकी पसंद के गीत के साथ और उसके बाद कुछ बातचीत करेंगे। सुनवाते हैं आपकी पसंद पर अंदाज फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की पसंद आप सभी श्रोताओं की। दुर्गापुर, सिद्धार्थनगर, दरियापुर, भापली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप अशोक येले, पटेल नगर मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, रघुनाथपुरा से लालगिरी स्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी स्वामी, गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी और इनके परिवार के सदस्य हैं।

गांव बांडी फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, नूरगुर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गांव जोगीवाला से प्रेम सहारण, मोनिका मनी सहारण। गांव खारिया सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश अंशु, बलदेव कटारिया। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा और अलका मिठा। बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना, हिमानी जाखड़ और शिवम जाखड़। हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र कपिल, कांता चौधरी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार, सुशील डेलू, राकेश चाहर। नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, परखर शाह, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन बारासा। आप सभी ने सुनना चाहा है शैलेंद्र सिंह।

की आवाज में ये गीत जिसे हमने लिया है बॉबी फिल्म से, गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: वो भी ऐप से। वाह, फंसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मंडी गोलवाला से ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और अलका अनेजा। गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोलालची बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत बेनीवाल। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, RB खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार। अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मोहनलाल वर्मा और इनके परिवार के सदस्य। गांव बुर्ज हनुमानगढ़ से। पालमपुर जिला कांगड़ा से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग। राम सिंहपुर से अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल, मनु बब्बर। गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमीला ढुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना। यहीं से सचिन, विष्णु और शिवम ढुकिया। गांव कल्याण मलका, जिला बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर, सचनूर और मनिंदर। घानोरा विटाली, तहसील नांदुरा से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया। गांव होडू, जिला बालोतरा से उमेदा राम, सवाई सिंह, राजेश कुमार और इनके परिवार के सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है अभिजीत की आवाज में समीर का लिखा गीत, संगीत नदीम शरण का, फिल्म का नाम राज।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चक 6 MSR अनूपगढ़ से रमेश कुमार, पारुल, समीर, अंशुमन, सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, रतनारा जोधपुर से नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, अरविंद, सरोज भाटी, नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहनकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुर्रेकर, मंडी डपौली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, गांव अरायण से डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, रायसिंह नगर से सुनील डाल, सोहनलाल, परवीन सरावगी, नरसी सिंवर, चेतन राम जी, जोशन जी और सभी परिवार के सदस्य, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, रानी, गुरमंत, सूरतगढ़ से नरपत लाल चौधरी, चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर

0: इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और इनके परिवार के सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले को, फिल्म का नाम जोनी मेरा नाम।
1: तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए बैराग फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, पसंद आप सभी श्रोताओं की। बागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश बैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, इनके साथ निवान शर्मा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। लखनऊ यूपी से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, समाजिस दानिश शेख, अमन आफरीदी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा। पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी

डुमराम बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अबीदा, वसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, महताब अंसारी, मिराज और कल्लू मल्लू अंसारी, जलंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत, कमल साहनी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, सूरतगढ़ से अशोक कुमार सोनी, बोडसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार, हनुमानगढ़ से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, समडील नवपारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता, चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन, वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोसन, 74 एलएनपी से डॉक्टर विचित्र सिंह और इनके परिवार के सदस्य, गांव लूनी तहसील लूनी जोधपुर राजस्थान से अजीज खान टेलर, शबाना बानो, रुखसार बानो, काजल और आदिल खान, राज पैलेस मऊनाथ यूपी से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, सूलर पटियाला से सन्नी कंबोज, मनिंदर कंबोज, तरसेम सिंह और जसविंदर सिंह, आप सभी ने सुनना चाहा है तलाश फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत मजरू का और संगीत एस टी बर्मन का।

0: तो परमाना।
1: अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत गुरु शब्द सिंह राहुल। नोखा से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोरधन घनश्याम, बाबू गौरी, हसन सिक्का। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान,

संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। गांव बड़वाला हनवंता से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, याशिका, विद्या देवी और इनके परिवार के सदस्य। गांव खारिया ढाणी, जिला सिरसा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राशवाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। आप सभी ने सुनना चाहा है यसुदास को, फिल्म का नाम है सावन को आने दो। तो

रेणु दिव्यांशी आराधना रोनिका यादव। हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह मुकेश रामचंद्र कांता चौधरी कपिल देव। बहेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़ ममता प्रिया नैना जाखड़ हिमानी जाखड़ शिवम जाखड़। मानपुरा साबित जिला मुरादाबाद से शेख जिया शेख उताउर रहमान शेख हबीबुर राम रहमान। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद सुनीता सूद आशीष सूद चांदनी और विश्वजीत। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित और तानिया नारंग। आप सभी ने सुनना चाहा है धर्मात्मा फिल्म का गीत आवाजें मुकेश और कंचन की।

गांव जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। लाहिड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी

श्रोता भी ये वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल में आप सुनेंगे पत्रोत्तर के अंतर्गत अपने पत्रों के जवाब। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि संबंधी जानकारियों के अलावा लोकगीत और लोक भजन। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा 9:15 पर। चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन आप सुनेंगे रात 10:00। प्रस्तोता होंगी सुमन कंवर। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अब आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

0: अपना एक मालूमाती जायजा पेश करें दे पेन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा।
1: सराइकी दुनिया की सब तो पुरानी जबाना विचों एक मन्नी बन सकती है। मन्नन वाले ये भी मनेंदे हैं कि ये जबान ऋग्वेद तो भी पुरानी है, अतः हिंदा ताल्लुक मोहनजोदड़ो की तहजीब दे नाल है। मुल्तान ही जबान का मरकज रहे। आख्या वेंदे कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी का ताल्लुक मुल्तान दे नाल है। हिंदा मतलब यह है कि मुल्तान हूँ जमाने विच ही मौजूद है। ही जबान का इलाका आज दे पाकिस्तान दा मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, मियाँ वाली, झंग, सरगीदे दा मगरबी हिस्सा ते बलूचिस्तान अते सिंध दे कुछ हिस्से भी शामिल हैं। हिंदुस्तान दी तकसीम दे बाद हिकु बोलन वाले हिंदुस्तान दे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात अते मध्य प्रदेश विच वस गए हैं। हरियाणा दे कई इलाकियां विच ते ही जबान को बोलन वाले दी तादाद 40% तक है ते दिल्ली विच भी कई इलाके ही जबान को बोलन वालियां दे हैं जिन्हां दी आबादी कई लख बन वेंदी है। पाकिस्तान दी सरकारी जबान उर्दू है पर राबता जबान सराइकी दे बोलन वालियां दी तादाद पाकिस्तान सब तो ज़्यादा आखी वेंदी है। अज ही जबान को बोलन वाले दुनिया के हर कोने मौजूद हैं। ये भी आख्या वेंदे कि 4th century BC विच चंद्रगुप्त मौर्य दे वक्त ये जबान सिंध तो घिन के कश्मीर तक बोली वेंदी है ते तक्षशिला दी मशहूर यूनिवर्सिटी विच पढ़ाई सराइकी जबान दे विच ही कराई वेंदी आई। कुछ विद्वान इस जबान को अपभ्रंश तो निकली हुई जबान मनेंदन। अपभ्रंश हिंदुस्तान 7वीं से 12वीं सदी की जबान रही है। इनका विकास कह कई अपभ्रंश तो मनथ्या मनिया वेंदे। सिंधवी, जटकी, हिंद को, डिलाही, लहंदा, हिंदे ही अलग अलग ना हैं। शायद ही कोई दूजी जबान हो सी जेंदे इतने नावा नाल जड़ी जानी बन सकती है। हिंदुस्तान विच हाल ही इस जबान को अलग अलग इलाकों के नावा नाल पहचाना वेंदे जिमें मुल्तानी, डेरे वाली, मियाँ वाली, झंगी वगैरह। कुछ लोग सराइकी उत्ते संस्कृत असर देखते हैं जिमें खीर तो खीर, निद्रा तो निंदर, पक्षी तो पख वगैरह। इन्हों रूपों में अभ्रंश का ही रूप लगते। ये भी सच है कि अभ्रंश के लफ्ज़ अज तक भी उन्होंने रूपों में ही सराइकी मिलते हैं जबकि हिंदी वगैरह दूजिया जबानों में उन्होंने रूप पूरी तरह बदल चुके हैं। ही लिहाज नाल भी सराइकी जबान का बिना जबानों के मुकाबले पुरानापन साफ झलकता है। पर वल ये सोचने की लोड़ पौंदी है जे सराइकी संस्कृत के बाद की जबान है जां वेदा तो पहले की जबान। पतंजलि ते पाणिनी का रिश्ता भी सराइकी नाल जोड़िया वेंदे। पाणिनी संस्कृत का सब तो वड्डा ग्रामेरियन मनिया वेंदे ते संस्कृत का अज का रूप पाणी का ही दिता होया है। दरअसल जबान के बारे सब तो पहला सोच ते लिंग्विस्टिक एनालिसिस सब तो पहले ही इलाके च शुरू थिया है। संस्कृत ते सराइकी दे रिश्ते बाबत हाल ही अच्छी तरह खोज की लोड़ है। नाल ये भी जरूरी है जे सराइकी जबान की पूरी तारीख की बाबत चंगी तरह खोज की बने तो उनके साहित्य की पूरी पहचान बनाई बने। वेदा पुराणा च देवता ते असुरा की लड़ाई का जिक्र आंदे। उनके बाद सिकंदर तो लग के पूरी तारीख च इलाके को बाहरी मुल्कां ते कौमां दे हमले बर्दाश्त करने पए हैं। ही वजह नाल ये जबान सदियां तो राज या सरकार की जबान नहीं रही। ही करके एक उस सरकार की पैट्रोनेज नहीं मिलिया ते हिंदा साहित्य मौके का जबानी ही एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक पहुँचता रहे। आपस के मेलजोल के नाल ही इलाके विच भी वो सूफी साहित्य पैदा थे जिंदे विच इंसानियत दा ते प्यार दा जज्बा है अते जड़ा सच्चे मापणियां विच ते मायनियां विच मज़हबां दियां दूरियां खत्म कर देंदा है। ही जबान विच लोक बोली की मिठास भी है ते उच्चे दर्जे का अदब भी मौजूद है। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जड़े लखां लोग अपने इलाके छोड़ के हिंदुस्तान दे आ गए उनके दो नतीजे थे। एक तो ओही पासे आके खिंड गए तो दूजे बिना लोगों विच रच रह के उन्हां नाल घुल मिल के उन्हां दी जबान उन्हां अख्तियार कर दी तो अपनी माँ बोली घर के अंदर तक ही सिमट के रह गई। नवी पीढ़ी अपने आस पास के माहौल के असर के नाल अपनी बोली तो दूर थींदी गई तो घर विच भी बाहर वाली बोली ही बोलन लग गई। खिंडन का एक दूजा नतीजा ये भी था कि ही जबान को बोलन वाले अज सारी दुनिया च मिलते हैं तो जिहड़ी जबान कल तक एक इलाके च महदूद आई अज वो सारी दुनिया च फैल गई है। अपनी जड़ां तो दूर रह के भी यह एक जिंदा जबान है तो अपने लोगों नाल ही नहीं अपने सांझे विरसे नाल भी पूरी तरह जुड़ी हुई है। इस जबान वो लफ्ज़ भी अज तक जिंदा हैं जड़े अपने अहले जबाना के विचों भी भुलाते गए जिन्हों को ही जबान ने वो लफ्ज़ गिद्ध हैं। दूजे पास सूफी शायरी, किस्से, कहानियां, अखाण, बुझाड़त, मुहावरा ते शेरो शायरी का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। सराइकी की अपनी वखरी लिपि कोई नहीं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

0: परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, AI और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8,00,000 रुपये में सौदा किया। SOG ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपये जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की।

अपने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का

0: लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच आज कई उत्तर पूर्वी जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 2 दिन का सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस अभियान के तहत 727 थानों पर बड़ी संख्या में वाहनों की कड़ी जांच की गई। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7,000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री

0: ओटा राम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया बहुल शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगणना कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2,242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू बारा विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में 12 में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइपलाइन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 शाखा रा सरकारी मूल माय बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माय आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपया रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल

0: 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। इंसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल फैला। तुअर्री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 आखारी खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,000 करोड़ रुपया रा खर्चू कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावा सारू खास योजना ने ही मंजूरी दीनी।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवण वाला मायो 85.20% पास फेक्या। इम्तिहान माए लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जदके लड़का रो नतीजो 82.13% रह्यो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माय लीरीजी परीक्षा माय 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जमायों 15,07,000 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायों 86.78% पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायों 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इन साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रह्यो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षावां रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जदका सेकेंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न ली जावेला। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माए फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माए हेराफेरी करण रा आरोप माए 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माए राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा न बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वहाँ का न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माए फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8,00,000 रुपया माए सौदा करण रेठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माए खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है। वे आज कोटा माए कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माए बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक जोड़ और खुदरेपाण उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवाना नौकरी करण वाला रे बजाय नौकरी देवन वाला बनबा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माए ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवाना तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माए 358 विद्यार्थियों ने डिग्रियां और 14 विद्यार्थियों ने सोनारा तमगा देर नवाजी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माए राजस्थान और हरियाणा सरकार भी

0: च खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली में आए जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण रिमियाद तय करती रीची है।
1: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावणो हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माए पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म भै जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत 5 जिला सारू 18 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत माए राखी जी मीटिंग माए दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी और बालोतरा माए आ कामा सारू 10,76,00,000 रुपए जारी करी चिया। इन तहत दौसा और डीडवाना कुचामन माए भाटा उद्योग चूरू माए लकड़ियों बनिया सामान फलौदी माए सोना मुखी भंडारण और बालोतरा माए टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया जावेला। राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथे काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय रे ओरों 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारे में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर SP सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगा ने इनू जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू में आई आज प्रगणका सारू खास शिविर लगाई चिया। अरबे मौसम प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगणी हलका माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबू गर्म रहो जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर माए दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर बीकानेर और चित्तौड़गढ़ माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा और बीकानेर माए लू रा हालात रहा। राजधानी जयपुर में आई लू सरीखा हालात बीच कई ठोणा प्रशासन सड़क माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नू लागोड़ी सरहद कने रा हलका माए काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन बीच राज्य रा उत्तराद उगणी हलका माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद माए खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नहीं मिलिया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला माए खास अभियान राते अतलिया जे 837 नमूना मायूं 223 ते मानका माथे खरा नहीं उतरिया। सलूमबर्रा PMC राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माए विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया। ई मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुविधा रो फायदो लेवण बाबत कहो। वे DFMT मधु टीन शेट लगावण रा काम री शुरुआत कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सारू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला। ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल

0: राम राम नवीन भाई, राम राम।
1: राम राम सज्जन भाई, चौपाल कार्यक्रम सुननिया सगला भाया ने घणी ने घणी राम राम।
0: मोकली मोकली राम राम।
1: तो आज के लेगा चौपाल में थे
0: आज नवीन भाई? देखो कागत आयडा है खूब सारा, संदेश खूब सारा आ रहा है।
1: संदेश तो बहुत ही आयडा है, आप पढ़ सियांगा सब ने आप
0: देश है। अच्छा अच्छा देश है, बहुत बातें कर से आज तो
1: सज्जन भाई। बारे आंधी आन ला रही।
0: हां आंधी तो आवे, देखो
1: मन तो सुबह फिर लाग गयो।
0: हाँ बात हरकन पानड़ी आ गई।
1: पानड़ी कोनी आई, मैं सुबह मोटरसाइकिल धोई।
0: अच्छा
1: तो मैंने पता आज तो आंधी आई सी।
0: आज तो आंधी आई सी
1: पता लाग जे।
0: मोटरसाइकिल धोनते हैं वो पानी तो थे फिर और मैं धूल फेर दी।
1: भगवान ने पता लाग जे तो
0: बिल्कुल मौसम खराब हो रहा है ऐसा। तो अपना किसान भाई जी का है काम धंधा ही आपका जी का है। मौसम के हिसाब से ही आप कोई बीजा भाई करनी है तो मौसम के हिसाब से ही आप करा।
1: खराब मौसम में क्या है कि कोई पेड़ डाली के नीचे ना खड़ा रहो, कोई बिजली कड़कती हो तो भी यानी छुप गए सुरक्षित जगह आप गए चले जाओ।
0: बिल्कुल सावचेती रखा थे जद ही वो आज मन ला गया यहाँ मुंडा सो मार गया है।
1: भाई जी ध्यान रखना पड़े।
0: बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना पड़े तो सावचेती रखा भी तो फायदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं मेरे को संदेश आडो पढ़ दूं।
0: पढ़ दो पढ़ दो।
1: ओ नाईवाला गांव से जिला हनुमानगढ़ वेद मिड्डा और अलका मिड्डा को संदेश है। ये राम राम दे आपने और श्रोताओं ने सबने राम राम दे।
0: घने घने राम।
1: आना चौपाल घने पसंद आवे।
0: बहुत ही बढ़िया है।
1: नियमित रूप से सुना है कि बाजार भाव, मौसम जानकारी, कीटनाशक वगैरह, कृषि की बातें हैं, ये सारी आने बढ़िया लागे। गीतारो गजरो है वो भी बढ़िया लागे और आकाशवाणी सूरतगढ़ सान है बहुत ही लगाव है।
0: बिल्कुल सा मोकलो सारो धन्यवाद और कार्यक्रम जो कोई ये सुनता रहे और कागज लिखता रहे या संदेश भेज दे।
1: ये मान्य भी हमारा श्रोताओं को नहीं लगा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सा। और कागज भी आपने गन पूता हड़ा कागज तो देखो मलोट पंजाब से आए है और लिखे है राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा, प्रियंका इंदौरा, रमन इंदौरा, रितु इंदौरा और मिशेल खन्ना, किनसुख खन्ना, भविष्य खन्ना और बेबी दीपांशी इंदौरा। लिखा है कि कार्यक्रम जो है माना बहुत ही अच्छा लगे और लगोलग में कार्यक्रम जो है थारो सुना और जो की जानकारी दे वह बहुत ही दया और काम भी बहुत आवे, खासकर जो की खेती से संबंधित है या जो की जानकारी मौसम की बाजार भाव की दो ऐ बहुत ही काम आवे।
1: सज्जन भाई देखो आपनों तो वो काम ये आप कोशिश करें हाँ कि जितना ज़्यादा ज़्यादा विशेषज्ञ आ जाए अपने कने बांगी बात आप अपना किसान भाई कने पूर्ति कर जा। विषय के है कि बांगी सब फसल भी बढ़िया हुआ है, बांगी आमदनी बढ़े।
0: बिल्कुल
1: कोई हरी बीमारी है बेसर भी पशु दूर रहे, बेबी दूर रहे।
0: बिल्कुल देखो नई नई तकनीक आवे बा अपन टेमो टेम पूर्ति करी दे बांते। साधुल शहर से कागत आया है और मंडे है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। लिखा है कि कार्यक्रम जिको है बहुत ही अच्छा लागे और जिका लोक गीत और भजन सुनाओ वह बहुत ही दया है, सुन के आनंद आ जाएगा।
1: अपना कलाकार सारा हिस्सा है देखो
0: जोरदार
1: है। लोक भजन गावे यहाँ जिनको मिश्री सी घोड़ा है।
0: मिश्री सी घोड़ा है बिल्कुल। और आप अच्छा अच्छा लोक भजन और जिका नुआ लोक भजन भी आपने कहना वे भी आप ये सुनाता रहे कार्यक्रम सुनता रहे तो भजन भी सुनने मिलता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जन भाई देखो एक पत्र आया मेरे कने। ये पत्र तो कोई संदेश है। गाँव गमंडिया हूँ ए जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढूकिया एक है कि चौपाल जी को पेश करेनी माने सब ने राम राम। तो राम राम सा
0: घने घने राम राम जी।
1: तो एक है कि पिछलो जी को पत्रो तरबे में नवीन जी, रमेश जी कहो माने बहुत ही लाजवाब लाग्यो। तो पत्रो तरबे में देखो मैं उजू आज सज्जन भाई है और मैं नवीन सागा थारा बैठी हूँ है। एक है लोक भजन लोक गीत ये दोनों ने बढ़िया लागे। रामेश्वर भाई गोज को गीतारो गजरो है वो भी आना चोखो लागे। कृषि की जानकारी, पशुपालन की जानकारी, बाजार भाव सब आने बहुत ही चोखो लगे।
0: बिल्कुल सारा पाई है जी क्या जानकारियाँ तो पूर्ति करता रहवांगा। और गांव दौलतपुरा गंगानगर शू कागत मांडियो है शोलाल बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत, अंजू बेनीवाल। लिखा है कि कागत में जिको लगो लग भेजा और कार्यक्रम भी लगो लग सुना और बिल्कुल सा दादो रंग जो कागत है वो कदी आज तही चुक्यो को नहीं।
1: दादा का कागत हुआ मार्क नहीं यहाँ पूरा
0: हाँ पूरी पोटली आवे
1: पूरी पोटली आवे बनाई
0: बिल्कुल है थे। अरे थारो कागज जो है हमेशा ही पुगतो
1: पोटली में कागज आवे और सागा आंगो लाड आवे।
0: लाड आवे बिल्कुल। और लाड ये बनाए राखियो और ये कागज आन दियो थे।
1: ओ देखो एक मैसेज और मैं पढूं।
0: पढो।
1: एक है गांव खोखरा वाली विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। ये है गाँव राम जी वाला हूँ राय श्रीनगर हूँ, रणजीत राम जी कल्याणा और पवन कुमार कल्याणा ये सगला अपन है राम राम और खमा गणी सा बोले है। चौपाल जी का ये रोजिना सुना है और घणो फूटरो लागे सा आने है। चौपाल में गीत भजन है, बाजार भाव है, मौसम है, खेती है, आने आ सारी चीज़ों से फायदो हुए।
0: बिल्कुल सा। और आंगो भी जी को है संदेश या कागज जी को है लगो लगावा भी खातर मोकलो सारो धन्यवाद। और मंडी गोलू वाले से हूँ ब्रिजलाल चौहान और नीरज कुमार चौहान। लिखे है कि सगला पेश करने वाला ने और सुनिया ने सगला ने घनी घनी राम राम, थाने भी घनी घनी और मोकली मोकली रामा श्यामा जी। और लिखे है कि कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छो लागे, बहुत ही दया आवे और गीत भजन जी का है वह बहुत ही जी का है माने अच्छा लागे, और सागे जी का नाटक सुनाओ वह भी बहुत अच्छा लागे। तो बिल्कुल सा अच्छा अच्छा जी का नाटक है और गीत भजन जी का है वे थाने यहीं सुनने मिलता रही सी, और थे कार्यक्रम जो है अलग अलग सुनता रहो और कागत जी का है यहीं मानता रहियो आगे।
1: सज्जन भाई जी थे चौपाल कार्यक्रम रोज सुनया करो नी?
0: बिल्कुल सा
1: है। तो मैं एक कर विशाल भाई जी में बात करी नी
0: जी,
1: का वो मोबाइल कम चलाया करो, देखो थारला में घंटी बाजन लाग गई है, ध्यान कौन रखो थे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हो तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है सा। और आपने अगलो जो को संदेश आयो है
1: वो पढ़ दूंगे,
0: पढ़ दियो।
1: पत्र तो चौपाल में चक 15 PSU से सरवजीत सिंह जोशन और सरवजीत कौर जोशन गुरमन और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल जोशन, अरे सागे बेरो के मांड के भेजे है,
0: बताओ सा की
1: कंगारू बना रखे है ऑस्ट्रेलिया
0: में है,
1: और वैंकूवर कनाडा से रोबिन सिंह जोशन और चक 78 LNP सू डॉक्टर विचित्र सिंह और आंगो पोतो है अविंदर सिंह, वो नाम देखो मैंने पढ़ने में थोड़ा दूर लगा गया सुनने को नहीं है, अविंदर सिंह लिख खड़ो है ठीक है। एक है कि मानत जी को प्रोग्राम करता है ना माना सर ने मोकली मोकली रामा श्यामा दी है, अरे चौपाल जी को है नित्य सुना है और उन्हें पत्रोत्तर और गीता और गजरो जी को है बढ़िया लगा सागर राजस्थानी नाटक भी आना बहुत बढ़िया लगा। तो सज्जन भाई आजकल आप नाटक भी है नहीं अन नित्य आना रोज आना आप कई बार लगभग सुनाते ही रहा है।
0: देखो बाहर ले मुल्क में रह गए वीरा अपना कार्यक्रम सुने
1: तो आप बात ही बहुत ही बढ़िया लगा कि देख आपके देश की मिट्टियों की तो जुड़ाव है देखो,
0: और आपनो जो को कार्यक्रम है वो तो अपनी राजस्थानी भाषा में बागड़ी भाषा में
1: जोशन परिवार ने घनी नहीं घनी राम
0: राम राम गंगानगर शू बजरंगलाल शर्मा जगमोहन सिंह अरनेजा दिनेश कुमार शर्मा नरेश कुमार शर्मा लिखे कि कार्यक्रम जी का माना बहुत ही दया है
1: अच्छा।
0: और कार्यक्रम में लोग लोग सुना और गीत भजन जी का बहुत ही अच्छा लगे,
1: बहुत ही धन्यवाद सर, सुनाया करो सगला ने सुनाया करो। राम राम दी है अपने गांव बंडीवाला फजिलका पंजाब हूँ, ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया योगेश बगड़िया रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। एक है कि चौपाल जी को प्रोग्राम है मैं हर हफ्ते सुना, हर हफ्ते क्यों सुनो भाई हर रोज़ सुनया करो है?
0: बिल्कुल
1: हर हफ्ते नहीं रोज़ सुनया करो, माने बहुत ही बढ़िया लगे और महीना में एक बार नाटक जरूर सुनवाया करो। तो थे चौपाल अगर रोज़ सुनोगा नहीं तो थाना पता होगा महीना में नहीं, मैं तो एक हफ्ता में एक रोज़ बजावा
0: ए मन लग गया ना बड़े खो लाग गयो ए पत्रोत्तर हर हफ्ते सुने
1: अच्छा ए लिखो तो यहाँ
0: चौपाल ए मन लगा नहीं है कठे मार लो संदेश रे ना जा दबा दब लिख दिया।
1: तो बगड़िया जी मारो चौपाल से रोज सुनाया करो नाटक तो मैं हर हफ्ते बजाया करा है
0: बिल्कुल।
1: तो सज्जन भाई मन लगे आपा कागज तो बोला मांस दिया कोई भजन तो आप शुरू में बजाई
0: दे सा जमा कंप्यूटर वाली खिड़की खुली है
1: भजन तो होना ही चाहिए
0: ओ लियो थेके दियो तो आपा अपने जी का सुननिया है बन आपा सुना दिया भजन।

0: हमारे चौपाल कार्यक्रम को वो माने बहुत ही बढ़िया लगे। और एक है कि प्रोग्राम शुरू कर दो है अन अडी की लगी रहे है,
1: बिल्कुल 7 बजे
0: तो मन तो आपने उड़ीक लगी रहे 7 बजे तो चौपाल में
1: बिल्कुल
0: पहुंचा जल्दी
1: यहाँ
0: सी
1: डीक
0: है।
1: बोकरा भी घड़ी का देख तका बोकरा है यहाँ भी सात
0: बस
1: बजे और सुना दान भी यहाँ। तो देखो सारे ही कार्यक्रम अच्छा है पर एक जगह चौपाल में यहाँ अपनी भाषा में अपन सुना नहीं जदि यहाँ घी सो गल जैसा गई।
0: घी सोई गल जे, सही बात है
1: बिल्कुल
0: सज्जन भाई। एक तो कोई पत्र हो रहा था अपने
1: पत्र
0: पढ़ दो।
1: देखो वो कागज आयोडो है गाँव खेर का सिरसा छू और मांडियो है इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन और हनीलोट और आगे सागे मसीता डबवाली छू दर्शन लोट और मूर्ति रानी। ए लिखा है कि कार्यक्रम जी को है बहुत ही अच्छो लागे और कार्यक्रम में जी की जानकारी है वह बहुत ही काम आवे और सागे सागे जी की थे विशेषज्ञ जी का बुलाओ जानकार जी का आदमी बुलाओ वह जी की जानकारी देवे वह बहुत काम आवे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सा था। नहीं तो बढ़िया लगा मारो कार्यक्रम। अरे जानकारी जी के मैं थारे वास्ते ही लेगा वहाँ तो आने थे
1: बिल्कुल
0: आपके जी के खेत में, अरे आपका पशुधन का अच्छा वास्ते भलाई वास्ते थे आने करके
1: बिल्कुल
0: देखो थाने बिल्कुल फायदा हो
1: और
0: सी।
1: बिल्कुल सागे कागज या मैं संदेश जी को थे भेजो बिंग मा भी थाने कोई जानकारी चाहिए तो बा मांड देख रो
0: अभी
1: सागे
0: मांड सको
1: तो हाँ तो
0: हाँ
1: भाभी आपा कोशिश कर सें कि बा
0: मैं
1: जानकारी
0: कोशिश
1: पूर्ति कर
0: करांगा
1: देंगा आते हैं
0: वो
1: आपा।
0: पत्रों तर हो ही वास्ता कि थारी बात मारते ही पहुंच सके है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आजकल तो
1: सा
0: अपना व्हाट्सएप हो रहे
1: बिल्कुल
0: है। लेकिन सज्जन भाई मैं एक बात कहूँगी, मैं तो और कहना चाहूँ कि जिको श्रोता भाई आपने व्हाट्सएप करे नहीं, बिना मेल नहीं करनी
1: मेल
0: चाहिए।
1: नहीं करनी
0: अगर कोई
1: चाहिए
0: मेल करे वो फिर व्हाट्सएप ना करे,
1: व्हाट्सएप ना करें
0: बीच चक्कर
1: देखो
0: में कि आपने इतना नाम पढ़ना आपने भूले खो जाए, एक नाम दो बार पढ़ी जाए फिर
1: ब्लेखो हो जाए फिर क्या कहीं का नाम रह जाए कहीं का दो
0: कहीं में
1: बारी
0: रह
1: पढ़ी
0: जाए।
1: जाए
0: तो मैं तो
1: पर
0: आप चाहूँ कि
1: के
0: कोई भी
1: जिया
0: श्रोतों का नाम छूटे।
1: बिल्कुल पर कई बार क्या चा चा में नहीं है दोनों जगह कर दे पर नहीं करना चाहिए इंगो आने विशेष रूप से अपन ध्यान रख सी। बाकी अपना सुननिया जी का है वह आप अपनी बात पूर्ति कर दिया जरूर मान सी
0: मेरे
1: अरे
0: लिए
1: अब
0: तो
1: की
0: देखो सारे ही
1: हाँ
0: श्रोता है नहीं, वे
1: बिल्कुल
0: एक सा है ठीक है।
1: बिल्कुल तो ए जी का है अगले बार सुजी का
0: कोई
1: संदेश कर सी बांगी थे देख लिया भले मेल को नहीं आवे
0: सही बात है, सही
1: ठीक
0: बात
1: है
0: है।
1: तो हाँ मेल अब जी की आइडिया मैं बताऊं के थाने भी आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ छू
0: अच्छा
1: और मांडी है टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नील शर्मा जयवीर सिंह अमनदीप आगे सागे कालका शू शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ए सगला ने रामा श्यामा देवे और ऐसा आगे लिखा है कि कार्यक्रम में गीत भजन जी का माना बहुत ही अच्छा लगे विशेष कर जी का लोक भजन और लोक गीत सुनाओ वह बहुत ही अच्छा लगे।
0: लोक भजन लोक गीत को जी को रस है बिंगो
1: बिल्कुल
0: तो
1: सा
0: कई मुकाबलों
1: वो
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो धन्यवाद साथ है माना मेल करी। एक संदेश देखो आयडो है हयात कॉलोनी अररिया बिहार छू।
1: बड़ी दूर सु
0: देखो
1: आयो
0: कितनी
1: जी
0: दूर है।
1: बिल्कुल
0: फैजल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन है। एक है कि मारो नाम जी को कार्यक्रम चौपाल में शामिल करो। नाम तो था शामिल करी श्या और सागे थे कोई जी की थारी प्रतिक्रिया है बाबी लिख दिया करो माने बहुत ही
1: जरूर
0: बढ़िया लाग सी।
1: बिल्कुल आगे सारू मांड देसी
0: हाँ ये कह रहे हैं कि जिला नांदेड़ से महाराष्ट्र से
1: बिल्कुल
0: ए शंकरलाल जायसवाल गणेश लाल जायसवाल शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल आने भी चौपाल जी के बहुत ही चोखो लगे सा। लेकिन सागे फरमाइश और लिख दे, मैं तो कोई फरमाइश देखो फरमाइश कार्यक्रम में लिखा करो
1: बिल्कुल
0: है।
1: शुक्रवार ने गीता रह गए जरूर जी को
0: हाँ
1: अपनो
0: ये
1: फरमाइशी
0: देखो
1: गीता रो कार्यक्रम
0: मोहम्मद कलीम अंसारी जी है, जहीरा बेगम है, मोहम्मद अयान अंसारी है, मोहम्मद उस्मान अंसारी है, ये भी फरमाइश ही लिखी है। मैं कोई फरमाइश ना लिखियो आज तो के पत्रोत्तर में तो थे जितनी प्रतिक्रिया माने दोगा नहीं
1: बिल्कुल
0: हमारे कार्यक्रम में भी तो निखार आसी।
1: देखो एक दिन तो बातड़ी भी करनी चाहिए नहीं फरमाइश तो पूरी
0: हाँ
1: करी दें आप
0: फरमाइश
1: शुक्रवार
0: तो मैं
1: ने
0: बैठे ही
1: बुधवार
0: फरमाइश
1: ने
0: पूरी
1: आपने
0: करना
1: बातें
0: वास्ता।
1: करे करांगा आप बातड़ी करे
0: हाँ
1: करो मार सके खूब
0: तो
1: सारी
0: एक मेल और भाँच दियो फिर।
1: मेल देखो आई है ढाणी लाल खां शू और भेजी है जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां मुखराम आरिफ खां ईयान खान और अरशद खान। ए लिखे है कि कार्यक्रम जी को हमारे बहुत ही अच्छा लगे है और नाटक जी का हमारे ज़्यादा सुनाई करो और ऐसा आगे लिखे आज तो कह आदि आ गया है अब आदि कीठा किया आ गया मांडो तो है पर अब समझ तो
0: ये
1: कुनी
0: लिखनो चाहे अन दिया गी है
1: आंधी आ गई है तो
0: यानी
1: अब
0: मैं थाने कहीं नहीं
1: आदि
0: अन
1: लिख
0: दिया
1: दी
0: गी।
1: हाँ बिल्कुल वो थे मुंडा सो मार गया है जद थी समझ तो आ गई बाकी थे बता दियो फिर आगे तो बिल्कुल सा नाटक जी का थाने अच्छा अच्छा नाटक जी का जरूर थाने आगे सारूर पहला भी देखो सुनावा यहाँ और आगे और आप अच्छा अच्छा नाटक जी का भी सुना से सारू
0: बिल्कुल सा। देखो गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से हैं प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया। ये भी गीत की फरमाइश करिए तो गीत की फरमाइश तो आज कोनी करनी सा।
1: बिल्कुल
0: एक और देखो अपने जी को मैसेज आए हुए है। एक है कि राम राम सा चौपाल कार्यक्रम आना अच्छा लगा, गीत भजन बढ़िया लगे। और ये बोल रहे हैं गांव थोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर से है। ओसिया माता को मंदिर है बैठे बोला दिखे नहीं।
1: हाँ
0: हाँ इतनी दूर लिखे है तो सागे ओसिया माता को अपन ने आशीर्वाद भी भेजे हुए
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल भेजो ऐसा।

0: और देखो सागे, एक आपने व्हाट्सएप ग्रुप आपा वो बनायो है संदेश खातर, तो देखो संदेश आपने बिहार छूँ, महाराष्ट्र छूँ, दूर दूर छूँ,
1: दूर दूर से
0: व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने जिका श्रोता है आपने करण लागे, देखो आने भी बेरो लाग जे, हाथों हाथ भी व्हाट्सएप ग्रुप बनायो
1: तो
0: है
1: इसे पतो ला जाए कि आपने जिकी जनता है जिका
0: बिल्कुल
1: श्रोता है बे आजकल पूरा एडवांस है, देख लो
0: एडवांस है,
1: मेल
0: बंगो
1: भी कर
0: देखो
1: ले
0: प्रेम
1: व्हाट्सएप
0: प्यार
1: भी कर
0: भी
1: ले,
0: है, प्रेम प्यार भी है अपने सागे है,
1: प्रेम तो
0: तो
1: फिर है ही देखो है।
0: हाँ
1: और मेल
0: तो
1: पढ़ दो,
0: मेल देखो, मेल आपने कने आई है और मेल जिकी रघुनाथपुरा जिला गंगानगर छूँ और मेल मांडी है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ए लिखे है कि सुनील जी, रणवीन जी ने हमारा घना घना राम राम, थाने भी घनी घनी और मोकली मोकली राम राम जी। और ऐसा के सागे मांडे है कि चौपाल जी का नियमित सुना है और बहुत ही दया आवे, और चौपाल में जिकी भी जानकारी दियो किसान भाइया ने बहुत ही लाभ भी होवे। और सागे सागे जी को 7 तारीख ने चौपाल सुनायो नवीन जी, विकास भाई और भुरु भाई की प्रस्तुति जी की, बहुत जोरदार लागी सा, देखो सा अच्छो कार्यक्रम लाग्यो आने जी को थे
1: कार्यक्रम देखो अच्छो लागो, जदि तो आप कोशिश करागे और अच्छो आगे वास्ते कार्यक्रम
0: बिल्कुल।
1: ने बनाए
0: और
1: रखा।
0: सागे सागे मांडे है कि चौपाल में शिषपाल लिंबा जी छूँ, रोहतास जी की मुलाकात इबा भी जोरदार लागी, और 8 तारीख ने गीतारो गजरो रामेश्वर भाई जी को प्रस्तुत करो, वो भी बहुत दया आयो, और गीत भजन नाटक और मौसम की जानकारी, बाजार भाव ए बहुत ही काम आवे और बहुत ही अच्छा लागे। तो ई खातर है सगली जिका आकाशवाणी अपनो परिवार है बिना बधाई भेजे, तो मोकलो सारो धन्यवाद जी थारो,
1: बहुत
0: ई
1: बहुत
0: थे
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम
1: सर।
0: जो सुनता रहे करो।
1: हाँ अब देखो, बेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैन जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, ये भी गीत की फरमाइश करे तो, लेकिन सागे ये यहाँ भी लिख दियो कि मैंने प्रोग्राम बहुत अच्छा लागे, तो गीत की फरमाइश तो गीतारा
0: बिल्कुल
1: गजरा में करया
0: गीतारा
1: करो,
0: गजरा में
1: बाकी थाने प्रोग्राम अच्छा लागे आप बहुत ही चौकी बात है सर।
0: बिल्कुल। आ देखो नवीन भाई, कई बारी मेल में भी मैं देखूँ यहाँ भी ए जिकी यानी कि वह फरमाइश आ जैसा गया, तो कई जियाँ की करे अपना श्रोता है नहीं, वह मन लागे आलस कर जाए मांडन में, तो भी की करे वह कॉपी पेस्ट करके भेज दे, कई बारी वह शुक्रवार वाली बुधवार वाले दिन भेज दे दे।
1: ई ओड़ी लागे मने तो
0: हाँ तो
1: है।
0: भाई इत तो यहाँ आलस थोड़ो सो कम कर गए मेल में, बातड़ी मांडे करो 2-4 जगह बुधवार वाला दिन, फिर आप
1: हाँ
0: बांगा
1: कि नई
0: उथला में
1: बात
0: जैसा।
1: मांडे तो माने भी पतो लागे प्रोग्राम
0: हाँ
1: में के नयो
0: बिल्कुल
1: करनो है, के चालन लाग रहे है।
0: बिल्कुल
1: अलीका तहसील डब्बाली से लिखा है रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा और रानी सोनू और रजनी, एक है कि माने बढ़िया लगा कार्यक्रम, और जी को थे व्हाट्सएप आरोप शुरू करे है वो आने बहुत बढ़िया लगे।
0: बिल्कुल। यहीं पर देखो खूब सारा संदेश आवे, आज देखो आपने 10-15 मिनट में ही मन लग गया, 100 संदेश आ गया इनमें
1: संदेश तो सो ऊपर आयड़ा है।
0: ऊपर आयड़ा है। अब फिर क्या
1: हाँ
0: जिकाऊ नाम रह जाए नहीं, फिर भी यहाँ पनोड़ में देवे भी मारा नाम जी कह रह गया।
1: सजन भाई प्रतिक्रिया बहुत कम लोग लिखी है, आपको नाम नाम लिख के भेज दिए देखो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सा, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ छूँ, विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश कड़वासरा, युद्धव कड़वासरा, किडू राम जोईया, कृष्ण माइल और आंगा जी का बेली साथी लीलाधर स्वामी। ए लिखा है कि कार्यक्रम जो का बहुत ही अच्छो लागे, और ऐसा आगे लिखा है कि ग्वार फसल पर कार्यक्रम जो को वो बहुत ही अच्छो लाग्यो माने। बिल्कुल सा थाने जी की आपने फसल बाड़ी अभी ऊपर जी की है नुई नुई जानकारी जी की, अब बिल्कुल टेमो टेम जी की पूगता करता रहे आंगा।
1: बिल्कुल सा। देखो मायापुरी कॉलोनी श्री विजयनगर से हनुमान तिवाड़ी, मंजू वाला, दीक्षा तिवाड़ी, अटल बिहारी पारिक, मंजू देवी पारिक, विकास पारिक, कपिल पारिक और उत्तम पारिक है, एक ही कौन लिखियो देखो, एक तो ही लिख नाम लिख के भेज दियो। तो मैं तो कह कहूँ सज्जन सिंह जी एक
0: मन लगे थारो जी करे भजन सुनने
1: भजन
0: आवे,
1: सुना दो
0: बिल्कुल
1: है नहीं।
0: लियो सा सुनो सा।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा बी ए

0: एएमएस आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: नवीन भाई, मेला अपने कने पूगती हुई है गांव उमाला छू और मंडी है नौरंग सुथार, विष्णु सुथार, नीरज सुथार, योगिता सुथार, जय सुथार, सुमन सुथार। लिखा है कि कार्यक्रम जो मन है बहुत ही बढ़िया लगे और दो आवाज़ में करो वो तो और ही जोरदार लगे।
2: वाह सा, बहुत बढ़िया लगे, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सा।
1: अगली मेला अपने कने पूगती हुई है गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश छू और मंडी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। लिखा है कि कार्यक्रम जुका मान बहुत ही अच्छा लगे और सगला ने रामा शामा दिवे।
2: राम राम सा, सगला ने राम राम।
1: सादुल शहर छू मेल मांडी है राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। लिखा है कि पहला तो सगला ने सादर नमस्कार।
2: नमस्कार सा।
1: और आगे लिखा है कि कार्यक्रम जुको है चौपाल में नियमित रूप से सुना हाँ और प्रोग्राम को बहुत ही लाभ उठावा हाँ और जद सू चौपाल शुरू हुए है बीच हमारा सगलो परिवार जी को है चौपाल ने आपको परिवार ही माने हैं और मैं बिल्कुल ही मैं सहभागिता निभावा हाँ। बिल्कुल सा थारो जी को मेल है वा लगो लग पुगती हो और कागज भी थारा पहला जी का पुगता रहता।
2: वाह सा, सज्जन भाई चौपाल तो देखो अपना परिवार ही तो है। तो
1: बिल्कुल सा, और ऐसा के मंडे है कि बुधवार ने ई मेल पर जी को है प्रोग्राम आपने नहीं दिया और प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए और ऐसा के सागे लिखा है कि आज जी को है दोबारा में आरंभ कर दियो है। इंगे सागे सागे शुभकामना और आकाशवाणी सूरतगढ़ का जी का सीनियर अधिकारी नवीन जी सिसोदिया का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल सा थाने मोकलो सारों धन्यवाद भेजो है।
2: अब देखो सज्जन भाई, अब आप ए वास्ते तो क्या कि प्रतिक्रिया मांडो नहीं वैसे फर्क पड़ा है। अब प्रतिक्रिया लिखी कि मेल को नहीं पढ़ने ला रहे थे भी मैं कौन शामिल कर रहा।
1: बिल्कुल,
2: तो आप मेल पाछे चालू कर दी,
1: पाछे चालू कर दिन दी। बिल्कुल सा, और ऐसा के सागे लिखा है कि मंगलवार ने धानगी रुपाई के विषय में भूरा भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अच्छा जी का गीत भजन सुनाया और ऐसा के सागे मांडे है कि प्रोग्राम के माँ एक नए क्लेवर के सागे पेश करने लग गया। भी छूँ किसान भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा फायदे हुए है और प्रोग्राम छूँ किसान भाइयों घरे बैठे जी की है सारी बात की जानकारी मिल जाए और चौपाल सुन गए और घर में जी का है पुलिंदांग माँ पुदीनो लगाए है मिंगी खुशबू जी की है दूर दूर तक फैल रही है और आस पड़ोस का लोग जी का है रोज की चटनी बनाने खातर और पौधा को जी का पत्ता को रस पीने खातर गर्मी के माँ लेके जावे।
2: सज्जन भाई खुशबू तो हटता ही आने लग रही है।
1: बिल्कुल
2: आने, तो चटनियाँ ना कहते उठे भी लिया सी एक दिन।
1: बिल्कुल आपको मंगानी पड़ सी, अब तो बता दें अब तो थाने राम कुमार जी चटनी
2: एक तो मेरी कई दिन ही कड्डी पाकी पड़ी। एक सज्जन भाई अपने कोई कहो कि मैं कड्डी ख्वाशा।
1: बिल्कुल,
2: बैलोल नगर से कोई को पत्र आया।
1: हाँ, तो पत्र में भेज दी फिर थाने वा।
2: अब पत्र में को लागड़ी थोड़ी गणी क्या ही मुँह खा लियो है।
1: तो ब्यासी आर बी रायसी नगर से चेतन राम सारसवा, नौरंग राम सारसवा, प्रदीप सारसवा, ज्योति सारसवा, ममता सारसवा, नानू देवी सारसवा, सोन जी जांगिड़, शो प्रकाश खाती, धनराज भांबू, द्वारका प्रसाद सुथार, सुनील डाल, नरसी सिंहर, प्रवीण सरावगी। लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम माने बहुत ही अच्छा लगे है और सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत जी का है ये भी माने बहुत ही अच्छा लगा रहा है। सागे सागे जी की है फरमाइश भी भेज रखी है, तो बिल्कुल सा फरमाइश थे शुक्रवार ने गीतारा गजरा में जरूर भेज दिया। और ऐसा गया लिखा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ में रोजगी सुना माना अच्छो लागे और सुन गए जिस रोज है और सागे सागे सुनील भाई जी थाने घनी घनी राम राम, नवीन भाई जी ने भी घनी घनी राम राम। तो बिल्कुल सा थाने भी घनी घनी राम राम। और सागे लिखा है कि थारी बोली जी की बहुत ही मीठी लागे और दो जी की आवाज में प्रोग्राम है इनमें तो बहुत ही आनंद आवे और मैं सुनन लाग रहा और बहुत ही आनंद आवे। बिल्कुल सा मोटो सारो धन्यवाद थारो और यही थे सुनता रहो और कार्यक्रम जो है अच्छा अच्छो जो है सुनन ने मिल।
2: सज्जन भाई देखो एक और मेरे को मैसेज आयो है, राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभु ज्योत मिशन और बेबी जानवी का एक है कि शुक्रवार ने रमेश्वर भाई जी को गीतारो गजरो ले गया यानी बे मैं लोक भजन लोक गीत ए बाने बहुत ही बढ़िया लग गया और चौपाल में जी कृषि की जानकारी है, मौसम है, बाजार भाव है, पशुपालन है, ये सारी आने बढ़िया लगे। और एक है कि समय समय पर जी की थे जानकारियाँ दो नहीं ऐसे के कि कीटनाशक चुनाव हो, कृषि विशेषज्ञों का वार्तालाप हो, ये आने बहुत ही लाभप्रद लागे जिससे कि खेती जी की थोड़ी और सोरी हो जाए। खेती भी सोरी तो देखो कोनी
1: पर
2: जी की आपने जानकारी अगर सही समय पे पूग जाए तो भी इसके किसान ने फायदा हो जाए।
1: बिल्कुल,
2: ठीक है। तो ये राजस्थानी गीत भी आना बढ़िया लगा, तो आने बहुत ही धन्यवाद सा। और एक ही देखो सागे लिखे है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा, एक ग्राम पंचायत बठेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। एक है कि सूरतगढ़ में चौपाल कार्यक्रम मैंने बहुत बढ़िया लगा है क्योंकि ये भी एक किसान है तो किसाना वास्ते तो देखो कार्यक्रम हर खास।

0: बिल्कुल सर, आपनो कार्यक्रम ही किसाना हाँ, कार्यक्रम है
1: तो एक है कि सफल प्रस्तुति वास्ते चौपाल विभाग ने पूरो हार्दिक बधाई दी है, तो मैं तो बधाई दूं अपने श्रोताओं ने।
0: बिल्कुल, और आने भी मोकली मोकली
1: मोकली मोकली बहलोल नगर से देखो हरीश हैरी है, जगतार जहरी है, सुशील डेलू, राकेश चाहर है, एक है कार्यक्रम आने घणो दाय आवे सा है, राजस्थानी गीत भजन और खेतरी बात आने घनी ही अच्छी लागे सा। तो ये बहुत ही आने बहुत बहुत धन्यवाद सा। एक है कि जनगणना शुरू हो सी जद आपगी मातृभाषा गौर सूँ राजस्थानी मंडावनी ऐसा यहाँ संदेश दी है।
0: बिल्कुल सर,
1: है तो आज तो देखो अपना माननीय जी का न्यायालय वांगो भी एक निर्णय आयो है कि राजस्थानी जी की भाषा है।
0: बिल्कुल, और ये बात की आपने सगला जी का अपनी भाषा ने प्रेमी जी का है सगला ने बधाई, और बहुत ही अच्छी बात है। देखो
1: मैं कह कहूँ सज्जन भाई, आपकी भाषा तो देखो आपकी हो
0: आपकी
1: है, लेकिन
0: है।
1: आपका देश में जिकी भी भाषा है नहीं, मैं तो कू भी सारी आपकी है,
0: अपनी है।
1: ठीक है, कोई भाषा खुद की कोनी और कोई पराई कोनी, सारो देश अपनो है और सारी भाषा अपनी है। सागर देखो कार्यक्रम पत्रोत्तर चौपाल में पेश करना ने सब ने धन्यवाद दियो है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, अनारकली बाजार, जगरुआ पंजाब से, और
0: जगरावा सु है मन लगे थोड़ो लिखण में
1: ने जगराओ लिखे है।
0: हाँ वो जगरावा जगराओ पंजाब में वो एक ही है, बोलण में थोड़ो सो यहाँ
1: तो थे तो के बिना रह रहा हूँ तो मन तो ध्यान को नहीं है, मैं तो इन्हें कोई हूँ है। तो देखो एक और मैसेज आयो है, भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी, अंकित सिंह चौधरी, आने भी जी को चौपाल है बहुत ही चोखो लगे सा है।
0: बिल्कुल सा,
1: तो मैसेज तो देखो मेरे कने देखो,
0: देखो
1: सजन भाई इतना ये तो एक मेल और मास
0: मेल देखो अखिंदा सर तहसील कुलायत से पुगरी अपने कने कान्हा राम चौहान, और ए लिखे है कि कार्यक्रम जो का माना बहुत ही अच्छो लागे है, और मैं सगला कार्यक्रम लगो लग सुना है, और जितनी जानकारियां बाजार भाव गीत भजन सुनाओ वे भी चोखा लागे, और ए सगला ने रामा श्यामा भेजी है, तो थाने भी मोकली मोकली रामा श्यामा जी। गांव हिराणी पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, करोड़ीवाल लिखे है कि कार्यक्रम जी को मैं लाइव सुनन लाग रहा हूँ, और कार्यक्रम जी को माने बहुत ही अच्छा लगे, ऐ मन लगे ऐ संदेश भी भेज दी और आ मेल भी भेज दी।
1: आई तो मैं कहूँ दोनों में से एक चीज भेजिया करो सा है।
0: बिल्कुल सा,
1: और एक देखो आपने वो मैसेज और आयो है कि बंडू पोपड़ घट है कोई, ये नमस्कार दिए, और एक है कि माने सावण की घटा फिल्म को गानो सुना दियो। तो आपने जिका ये नरेश भाई जी नहीं
0: जी
1: ये लिखियो है कि घटा कोनी अंधे चाले अठे तो बाबी टिका के चाले है, एका तो चोको सो मंतूड़ियो जी को नहीं थारे बैठे खूपटी में भेज देंगे है।
0: तो फिर आने फिर आप भेज दें का नहीं आंधी भेज दें, ये तो कौन भेज दीजिए, घी तू ही भेज दें,
1: घी तू भेज दो
0: लियो फिर लियो लियो जी आंधी है मारकन तो, और आ तार तई करा पूगती।

0: भेजिए। तो जी फरमाइश थे शुक्रवार ने गीता रे गजरा में थे, जरूर फरमाइश भेजा। तो बिंगमा जी की है फरमाइश थारी, कोशिश कर छा कि थारी जी की है थारे पसंद का जी का गीत भजन वे थाने सुना दिया। और बाकी कार्यक्रम जी का थे ये सुनता रहो, और सागे सागे जी का है मेल या संदेश जी के बांटता रहेगा।
1: देखो एक संदेश सज्जन भाई मेरे कन हो रहा है,
0: बांचो
1: एक है राम राम सा, अरे सागे दोनों ने राम राम दी है। एक है कि पूरो जिको गांव नगराणो है बांगी
0: जी।
1: तरफ से केंद्र ने जी की राम राम दी है। और दुलनाथ कच्छावा लालचंद नाथ परम सोन मंजू प्रदीप अमन अंकुश राहुल रीटा दीपक पीयूष हर योगेश नाथ प्रोग्राम शू में बहुत पुराना जुड़ेड़ा। हाँ ये थोड़ो लिखियो ये मैंने सुनो कम आवा देखो है एक है कि मैं
0: बिल्कुल
1: पुराना जुड़ेड़ा। हाँ अरे ये जो है शुरू से इन्हें सुन ला रहे चौपारा ने बहुत ही चोखो लागे, गीत बजाना ने चोखो लागे, जानकारी जिकी है बाना चखिला चोखी लागे। अरे एक है कि जिको लाइव भी सुनने लाग रहे हैं देखो है
0: बिल्कुल सा।
1: देखो सा
0: और देखो लाइव सुनता वैर भी टाइम आप अपना नाम लिख के भेजा रे या आप बोल दें जदियाँ बहुत आनंद आवे।
1: वासा देखो मेल को ही तो फायदो
0: और थाने एक
1: है
0: बात बताऊं के और कि ना आज्ञा तो करियो ना,
1: ना कोनी करूं।
0: मैं इं कई बार करे करूँ, मैं जब रामेश्वर भाई आवे या भूरू भाई
1: हाँ
0: आवे नहीं, जब मैं ही मोबाइल पर आपको नाम लिख के भेज दूँ यार, फिर वो यहाँ सुना नहीं,
1: मजा
0: जब बहुत आनंद आवे।
1: साजे हैं
0: बिल्कुल तो आ देखो मुकलावे छूँ रामा श्यामा भेजी है और लिख्यो है मदन बरोड़ मंजू बाला प्रीति बरोड़ दिव्या बरोड़ हितेश बरोड़ कामना बरोड़ लुभानी बरोड़ आरती बरोड़ और मुकेश राजू और आंगा माऊ बापू हनुमान बरोड़ और इमरती देवी रंग सगलो परिवार है। लिखा है कि कार्यक्रम जो का बहुत ही अच्छो लागे है। और अगली जिकी मेल अपने कने पुगती हुई है रायसी नगर छू सुनील डाल सोन लाल जांगीड़ प्रवीण सरावगी नरसिंह सिंवर चेतन राम जोशन और वेद प्रकाश धनराज। ए लिखा है कि मैं लाइव सुनन लाग रहा हाँ और कोको पेट्रोल पंप गया ऊपर सगड़ा मिल गए और सुनन लाग रहे हैं और कार्यक्रम जो का बहुत ही माने अच्छो लागे और आनंद आन लाग रहे।
1: आनंद के
0: बिल्कुल
1: वास्ते तो
0: सा
1: आप आओ कार्यक्रम चलावा सा
0: बिल्कुल।
1: है
0: गांव गंधेड़ी छूँ लिखा है कि मैं नियमित श्रोता हाँ और मंडी है पालाराम जी सियाग पुत्र आंगा रमेश संदीप और विमला सियाग मोनिका भावना राघव सियाग। ए लिखा है कि कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा करा बितनी कम है, कार्यक्रम पेश करने वाला ने हमारी तरफ से बहुत बहुत रामा श्यामा थाने भी मोकली मोकली राम राम जी। और ऐसा आगे नवीन भाई मांडे कि गीता रे गजरा में जी का गीत भजन में माना बहुत ही अच्छा लग गया है और कृषि और फसल छू जी की जानकारी दे संबंध छू वह भी बहुत आने अच्छी लगे है।
1: वासा। देखो आपने कहना आज बिरकाली गांव भी पत्र आए हुए नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: आया सा
1: बिरकाली गांव आपने चंद्र सिंह जी बिरकाली को है ए लू और बादड़ी आंगी लिख खड़ी है बेंगो एक माथा ना सुनाऊं के
0: सुनाओ।
1: है तेज दमक तो तावड़ो
0: वाह वाह
1: चमके जाने साण
0: आहा
1: है साणु चमके है
0: बिल्कुल
1: ले ले ले ले रगड़क आवता
0: बिल्कुल
1: लुआ लेवे प्राण।
0: वाह
1: तो
0: वाह
1: लू तो प्राण ले ले पर
0: बिल्कुल
1: देखो आंधी आ गई लू से
0: बिल्कुल
1: बचा दियो अपन है।
0: हाँ। पर भी मैं क्या है कि लू में थोड़ो सो क्या फसल बाड़ी को अपन ने ध्यान रखना पड़े जी का
1: हाँ अभी तो के बिजाई को भी मौसम चल रहे
0: बिजाई
1: हैं
0: को
1: तो
0: मौसम है
1: है
0: जब थोड़ी सी सावचेती रखनी है।
1: हाँ सावचेत है
0: कनवाणी राव सरसों कृष्ण जी स्याग ए लिखे है कि कार्यक्रम जी को बहुत ही अच्छो लगे माने। और अगले जी की अपने कने मेल आई है वह मगाली ढाणी सू दयाराम गुदारा हरिराम गुदारा ओम प्रकाश पारिक परवान पारुल मिष्टी तनुष्का चौधरी। ए लिखे है कि कार्यक्रम जी को लेरला कई साल से सुनने लाग रहे हैं और माने कार्यक्रम जी को बहुत ही अच्छो लागे और बहुत ही दाय आवे।
1: वासा धन्यवाद सा।
0: और अगली मेल अपने कन आई है 82 RB रायसी नगर सू चेतन राम सारसवा। ए देखो जी आ मेल आंगी आप अभी बांची है अरे मेल है दूसर मांड दी है
1: कोई
0: तो
1: नहीं गलतियों भेज दी उसी
0: हाँ
1: है
0: बमन लागे भी दूसर आ गई आंगी।
1: हाँ
0: तो चलो कोई नहीं आप अगली मेल जी किया मरुपुरा जालू खाट से अपना कन पुगती होड़ी है। और मेल मांडी है जगदीश चंद्र प्रजापति विमला प्रजापति मोनू प्रजापति। और ए लिखे है कि सारों पहला तो रामेश्वर भाई ने राम राम और माइड भाषा जी की बहुत ही अच्छी लागे है और मनसा भाई जी से जी का कार्यक्रम है मैं नियमित रूप से सुना हाँ। देखो हाँ
1: वासा
0: बात जी की दो तीन बातें इन्हें मन लागे इकट्ठी कर दिन दी
1: ए सोचा मैं एक करी बता दूँ सारी
0: एक करी
1: बात
0: बता दूँ
1: नहीं भैया
0: सारी
1: ठीक है
0: बात है।
1: प्रतिक्रिया तो देखो सज्जन भाई लिखनी चाहिए। अब टेम तो देखो हो क्यों
0: वाह
1: है
0: एक सूरतगढ़ का बाजार भाव आइडा है बाँच दूँ।
1: बाज दो बाज दो
0: गेहूं का भाव रहा 2350 हूँ 2735 जो 2000 रुपया चिना बिक्या 5141 रुपया और सरसों की बोली लागी 5607 हूँ लेगी 6844 रुपया।
1: वाह सा सज्जन भाई तो चलना क्या अपन
0: बिल्कुल टाइम हो
1: है
0: गयो कार्यक्रम को अब तो फिर लेवा श्रोतांग नु आप आज्ञा।
1: आज्ञा दे दो सा श्रोतो
0: बिल्कुल
1: भाइयों है
0: तो राम राम सा
1: राम राम सा राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

ग्रामीण श्रोता अभी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुनील वर्मा और नवीन सिसोदिया। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

अभी आपने गाइड फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए अब सुने मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को। फिल्म का नाम है CIT।

是的，也不对。नया दौर फिल्म का गीत आवाजें मोहब्बत रफी और आशा भोसले की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है दिल तो पागल है।

दिल तो पागल है 1997 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है, जिसे यश चोपड़ा ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार ने अभिनय किया है। ये एक संगीत मंडली के सदस्यों की के प्रेम प्रसंगों की कहानी है, जिसमें दो नर्तकियां माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर अपने कोरियोग्राफर शाहरुख खान के साथ एक प्रेम त्रिकोण में उलझ जाती हैं। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया है और गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं।

दिल तो पागल है फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा, पट कथा लेखक यश चोपड़ा, तनुजा चंद्र, पामेला चोपड़ा, संवाद लिखे आदित्य चोपड़ा ने, कहानी पामेला चोपड़ा की, यश चोपड़ा द्वारा उत्पादित, मनमोहन सिंह का छायांकन, वी कर्णिक द्वारा संपादित, उत्पादन कंपनी यशराज फिल्म्स। ये फिल्म भारत में 30 अक्टूबर 1997 को रिलीज हुई।

श्रोताओं, 90 मिलियन रुपए के बजट में बनी फिल्म दिल तो पागल है, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन लागत भी शामिल है, इस फिल्म ने दुनिया भर में 718 मिलियन रुपए से अधिक की कमाई की और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें निर्देशन, कहानी, पटकथा, संगीत, छायांकन और शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार के अभिनय की खूब सराहना की गई।

दिल तो पागल है फिल्म को कई पुरस्कार मिले। 45वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 3 पुरस्कार जीते। निशा के रूप में करिश्मा कपूर के शानदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। इसके अलावा इसे 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में 11 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अक्षय कुमार शामिल थे। और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री करिश्मा कपूर सहित 8 पुरस्कार जीते।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म थी दिल तो पागल है। गीत जो कार्यक्रम में आपने सुने, इन्हें स्वर दिया था लता मंगेशकर, आशा भोसले और उदित नारायण ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी दिल तो पागल है। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरत करके कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाब अनवर। शबाब, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति, और श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सहित कई खिलाड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। फिलहाल बारिश के कारण मैच में कुछ देरी आई है और फिलहाल टॉस जारी है। अंक तालिका में देखा जाए तो कोलकाता 8वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कोलकाता के लिए सब कुछ आज के मैच पर निर्भर करेगा। जबकि बेंगलुरु चाहेगी कि आज का मैच जीतें और टेबल में टॉप पर पहुँचा जाए। शबाब, इससे पहले अगर कल के मैच की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन के बड़े अंतर से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल हैदराबाद की मजबूत बैटिंग लाइनअप का सामना फॉर्म में चल रहे गुजरात के गेंदबाजों से हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए, जिसमें साई सुदर्शन के 44 गेंद में 60 रन और वॉशिंगटन सुंदर के 33 गेंद में 50 रन का बड़ा योगदान रहा। हैदराबाद से प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। आईपीएल में लगातार 200 का आंकड़ा पार कर रही हैदराबाद के लिए ये लक्ष्य बेहद आसान नजर आ रहा था, लेकिन गुजरात के मजबूत गेंदबाजी क्रम के आगे SRS के साथ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए और पूरी टीम 15 ओवर पूरे होने से पहले ही 86 रन पर आउट हो गई। कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 19 रन जोड़े, जबकि गुजरात की तरफ से कागिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट तथा मोहम्मद सिराज और राशिद खान ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 1-1 विकेट निकाला। इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस 12 मैच में 8 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हैदराबाद 12 मुकाबलों में 5वीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: कोई टीम क्या सोच सकती है कि हैदराबाद जैसे बैटिंग लाइनअप जो लगातार 200 की छड़ी लगा देते हैं बैक टू बैक मैचेस में, उनको हम 80-90 के स्कोर पे रोक दें और मैच उतने ही अंतर से जीतें।
1: और इसका एक रीजन भी है। देखिए, जीटी एक ऐसी टीम है जो एक कंप्लीट क्रिकेट टीम है। अगर देखा जाए तो जिस तरह के खिलाड़ी उनके टीम में हैं, ऑलराउंडर, बॉलर, बैटर्स, अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दें तो ये टीम आगे बढ़ सकती है, जीत सकती है। ये टीम टेस्ट मैच की भी टीम है, यही टीम T20 की भी है, यही टीम ODI की भी है, जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी। साई सुदर्शन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, आपने देखा ही होगा, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो अगर हम जीटी की बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह से वो आगे ले करके गए, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने उनका साथ दिया, रन्स बोर्ड पर बहुत ज्यादा नहीं था, यहां तो 225 और 30 भी सेफ नहीं है इस T20 फॉर्मेट, इस IPL में भी देखा। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी उतनी संतुलित है, रबाडा और सिराज ने शुरुआत में क्या शानदार गेंदबाजी की और उसके बाद फील्डिंग भी आपकी अच्छी है, सब कुछ अगर ठीक ठाक है तो फिर आप मैच जरूर जीतेंगे, भले ही आपकी जमा पूंजी कम हो। अगर देखा जाए तो ज्यादा स्कोर था नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की गेंदबाजी है और जिस तरह का प्रदर्शन उनके फील्डरों ने किया है, राशिद खान जैसे बॉलर, एक कंप्लीट क्रिकेट टीम इस IPL में अगर मेरे हिसाब से अगर कोई है तो वो गुजरात टाइटंस है। और मैं फिर से कहूंगा ये बात कि इस टीम को आप किसी भी फॉर्मेट में उतार दीजिए, ये इसी तरह जीत हासिल करेगी। ये मौजूदा टीम सिर्फ T20 की नहीं है, इसमें जो खिलाड़ी शामिल हैं वो टेस्ट के भी दक्ष खिलाड़ी हैं, ODI के भी हैं और T20 के भी हैं। तो अगर ये टीम आगे बढ़ी है, इस समय नंबर 1 है, आज के मैच के बाद क्या होगा ये तो अभी समय बताएगा, चूंकि RCB पीछे है उनके, तो गुजरात टाइटंस डिजर्व करती है निश्चित रूप से। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चैंपियनशिप का खिताब वही जीतेगी, लेकिन इतना करीब पहुंच गई है, बहुत बड़ी बात है
0: जी। बिल्कुल,
1: इससे पहले किसी ने शायद

0: सोचा नहीं होगा जीटी के बारे में कि गुजरात टाइटंस की टीम इस तरह से ऊपर चली जाएगी और टेबल टॉपर होगी।
1: जी बिल्कुल, शायद अनुमान नहीं लगाया होगा। और ये टीम ऐसी टीम भी है जिसने आईपीएल की शुरुआत से लेकर कल तक जब उसने अपना आखिरी मुकाबला खेला, इस टीम ने लगातार अपनी गलतियों पे काम किया। जहाँ पे टीम थोड़ा सा विफल हो रही थी, पीछे रह रही थी, उन चीज़ों को सुधारा है। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब, तो कौन?
0: एक बात मैं सिर्फ
1: जी
0: ऐड
1: जी
0: करना चाहूंगा, अब आशीष नेहरा का नाम बहुत कम लिया जाता है।
1: जी
0: एक ऐसे कोच हैं जिनकी सेवा प्राप्त है, आपने उस तरह का कोच सिर्फ फुटबॉल में ही देखा होगा।
1: जी बिल्कुल
0: तो आशीष नेहरा की जो मेहनत है और जिस तरह से वो समर्पित रहते हैं और हर समय लाइन पर खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको क्रेडिट कम दिया जाता है और टीम को क्रेडिट ज्यादा जा रहा है। आशीष नेहरा ने इस टीम को काफी आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से।
1: जी बिल्कुल आगे बढ़ाया है। और कोचिंग का एक नया फॉर्मेट
0: जी हाँ, क्रिकेट में
1: क्रिकेट में देखा जाए
0: बिल्कुल
1: तो आशीष नेहरा स्कूल ऑफ कोचिंग जो है, ये
0: बिल्कुल
1: लगातार प्लेयर को मैसेज पहुंचाना, और सिर्फ ये नहीं कि आपको तेज खेलना है, कैसे खेलना है, कहाँ मौके बन सकते हैं। अगर आज के मैच की बात की जाए शबाब, तो कोलकाता है, कोलकाता के लिए ये मैच किसी डू और डाई से कम नहीं है कि आप करिए अन्यथा आप बाहर जाइए। और बेंगलुरु है तो क्या कह सकते, क्योंकि बारिश हो चुकी है, मैच ऑलरेडी 1-1.5 घंटे देर से शुरू होगा, ड्यू फैक्टर हो या ना हो, लेकिन एक धीमापन आपको मैदान में देखने को मिलेगा बारिश के कारण।
0: या थोड़ा आउटफील्ड तो धीमा हो ही जाता है। इसके बाद रन जिस तरह से चौके आप लगाते हैं, हालांकि आप ऊपर से अगर खेलें T20 फॉर्मेट है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोशिश इसी बात की जाएगी। लेकिन यहाँ रायपुर में थोड़ा सा गेंद धीमी आती है बल्ले पर, थोड़ी सी परेशानी है, रन बनाना उतना आसान होगा नहीं। और रही बात KKR की आपने कही, इनके लिए अगर आगे बढ़ना है तो सभी मैच जीतने पड़ेंगे।
1: जी
0: आज अगर हारे तो यहीं पर इनकी सेवा समाप्त समझी जाएगी, क्योंकि अगर प्रतिशत की बात करें तो आज का मैच जीतने के बाद RCB का प्लेऑफ में जाना 93% पक्का, और अगर ये हारे तो इनकी आशा जो है उम्मीद सिर्फ 2% रह जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डू और डाई तो KKR के लिए ही है।
1: जी बिल्कुल, डू और डाई होगा, और टीम चाहेगी कि अपनी उम्मीदों को
0: जी
1: आगे
0: हाँ
1: के लिए
0: बिल्कुल,
1: बचा के
0: क्योंकि इस
1: रखा
0: तरह से
1: जाए।
0: लगातार जो जीत हासिल की है, जो वापसी की है, वो निश्चित रूप से उसके दो खिलाड़ी खास करके दूसरे फेस में जिस तरह से पलटे हैं, गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और बल्लेबाजी में जिस तरह से रिंकू सिंह ने फिर से अपना फॉर्म हासिल किया है, तो वो चीज अगर आज देखने को मिली तो फिर मजा आ जाएगा।
1: जी बिल्कुल, हो सकता है कि भले बारिश के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया हो, लेकिन दर्शकों के लिए शायद बहुत सारा मनोरंजन
0: हाँ,
1: इस
0: अच्छी
1: मैच
0: बात
1: में
0: है कि
1: भी इंतजार
0: ओवर्स
1: कर
0: नहीं
1: रहा
0: कटे
1: है।
0: हैं, पूरा पूरे ओवर्स खेले जाएंगे।
1: पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाल, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुनते हैं आज खेले गए मैचों का हाल।
2: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारत का दिन मिला जुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तोंग सिउ तोंग को 21-9, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग को 13-21, 26-24, 21-13 से और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को 21-19, 13-21, 21-15 से हराया। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लोह किन यू को 21-14, 21-15 और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को 21-16, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं अच्छे फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिंगल्स में ही युवा थारून मन्नेपल्ली, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ और अनमोल खरब भी हार कर बाहर हो गयी। उधर मिक्स डबल्स में भारत की तीनों जोड़ियों का अभियान भी पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: एक मिला जुला दिन कह सकते हैं आज का, जहां आयुष के लिए शायद थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत का जीतना काफी ठंडक देने वाला है।
0: या बिल्कुल, लक्ष्य तो खैर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पीवी सिंधु ने जिस तरह का खेल दिखाया है, तो उनका फिटनेस का मसला था उनके साथ, उनका खेल देख करके यकीनी तौर पर बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपको याद होगा कि 2024 का जो सैयद मोदी टूर्नामेंट था, उसके
1: जी
0: बाद से उन्होंने कोई खिताब जीता भी नहीं है, तो काफी गैप हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, जिस तरह का फिटनेस दिखाया, फुटवर्क दिखाया अपना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में काफी आगे जाने वाली हैं। और फिर ये थाईलैंड ओपन एक ऐसा टूर्नामेंट है कि मोस्टली भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। तो और खा BWF का जो ये 500 कैटेगरी का जो ये टूर्नामेंट होता है, तो उसमें कई खिताब भारत के नाम पहले से ही हैं,
1: जी
0: भारतीय खिलाड़ियों के नाम। तो इसमें भी मिली जुली शुरुआत हुई है। कुछ अच्छे खिलाड़ी जिनके बारे में आपने बताया कि उनका सफर बहुत जल्दी समाप्त हो गया है, थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन प्रमुख खिलाड़ी पहले दौर से ही रेस में है।
1: जी बिल्कुल रेस में है, और उम्मीद होगी कि भारत के लिए, भारत की सबसे अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी जो वर्तमान में है पीवी सिंधु।

0: कुछ अच्छे प्रदर्शन
1: और
0: के
1: क्या
0: साथ।
1: जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने, क्या जबरदस्त, यानी कि जिस समय ओलंपिक में वो खेलती थी वो वाली सिंधु देखने को मिली है, बहुत जबरदस्त वापसी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2024 का जो फाइनल सैयद मोदी का, वहां से जो उन्होंने छोड़ा है वहीं से फिर पकड़ा है, और ये मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो क्या कहना।
0: जी बिल्कुल, ये मोमेंटम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ तक देखने को मिलता है तो बिल्कुल ये खिलाड़ी भारत के लिए कुछ और पदक और खिताब झटकते हुए नजर आएगी। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक

0: भारत के लिए कुछ और पदक और खिताब झटकते हुए नजर आएगी। गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने आज 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच वर्ग में रजत पदक जीता, बल्कि और इसी स्पर्धा में कुल 194 किलो का वजन उठा करके कांस्य पदक भी अपने नाम किया। चीन की जिनलान झाऊ ने कुल 216 किलोग्राम भार वर्ग का वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता, जबकि वियतनाम की होई हुइंग ग्वेन ने रजत पदक अपने नाम किया। और अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो गुजरात मेज़बानी कर रहा है, पहले दिन कोमल कोहर ने एक पदक भारत के लिए जीता था, उसके बाद आज ये पदक आया है, तो भारोत्तोलन खिलाड़ी भी लगातार मेडल्स और भार उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
1: हाँ, थोड़ा सा उम्मीद से कम है, लेकिन कुल मिलाकर एक मेजबान होने के नाते कहा जाएगा कि अच्छा प्रदर्शन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के मुकाबले आप देख रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप जितने भी खेलों जो ओलंपिक गेम्स है उसकी लगातार भारत को मेजबानी मिल रही है, और ये अच्छी बात है। हमने पिछले साल भी कई मुकाबले इस तरह के एशियन चैंपियनशिप भारत में आयोजित होते हुए देखी थी, जिसमें मुक्केबाजी भी शामिल था, और तो ये अच्छी बात है कि भारत एथलीटों को अपने ही दर्शकों के सामने अपने ही एरिना में खेलने का मौका मिल रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है।
0: जी बिल्कुल, और खासकर ऐसे वर्ष में जब आपको एशियन गेम्स खेलने हो तो तमाम
1: सारी तैयारी उसी की है। सबसे पहले एशियन गेम्स फिर ग्लासगो, तो तैयारी उसी की है, और उसमें जिस तरह के जूनियर खिलाड़ियों के एक पौध तैयार की गई है कोच की तरफ से, तो आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो आगे जो सीनियर स्तर के जो मुकाबले होंगे उसमें कई नाम आपको भारत के लिए पदक जीते हुए नजर आएंगे।
0: जी बिल्कुल, आपने नई पौध की बात की और पदक जीतने की बात की, इसी कड़ी में इस समय ताशकंद में जो एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, आज उसके अंडर 15 मुकाबलों के फाइनल खेले जाने हैं, जहां पे 15 भारतीय खिलाड़ी जो हैं स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नज़रें वहां पर भी होंगी कि भारत कितने सोनों के साथ कितने स्वर्ण पदक के साथ वापस लौटता है अंडर 15 कैटेगरी में।
1: ये अंडर 15 और फिर अंडर 17 अगर दोनों मिला दें तो 15 में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन है दोनों वर्ग में भारत की तरफ से हुआ है, और देखा जाए तो पुरुष वर्ग में अगर देखें तो लक्ष्य जरूर पहुंचे फाइनल में। जो तीन खिलाड़ी बाहर हुए सेमीफाइनल, उनमें से एक मुकाबला आपने देखा होगा नमन का, जो कि 70 किलोग्राम वर्ग में था, उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। जो चीज चाहिए बॉक्सिंग में, दो चीजें खास होती हैं, एक तो आपका मुक्का और दूसरे आपका फुटवर्क, तो नमन में ये दोनों चीज लक्ष्य की तरह ही देखने को मिली, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और 2-3 से वो ये मुकाबला ये बाउट हार गए, वरना ये खिलाड़ी भी भविष्य में काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है मुक्केबाजी रिंग में भारत के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपके 15 से 17 वर्ष के खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो देश को कुछ नई उम्मीदें और नई किरण नजर आती है। तीसरी राष्ट्रीय डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में तमिलनाडु के गुहान सेंथिल कुमार और संदेश पीआर की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में नमन सुराना और प्रणव अग्रवाल को 11-1 11-2 से हराया, तो बड़े अंतर से एक जीत दर्ज करते हुए नेशनल कंपटीशन में। और हांगकांग में 28 मई से शुरू होने वाली एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लंबी कूद के एथलीट शहनवाज खान को 48 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घरेलू प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर बुधवार को टीम का चयन किया। शहनवाज का नाम अंडर 20 प्रतियोगिता में 8.23 मीटर का रिकॉर्ड भी दर्ज है, और मोहम्मद अशफाक 400 मीटर रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि नितिन गुप्ता 5000 मीटर की रेस दौड़ते हुए नजर आएंगे। और पूजा ऊंची कूद में इस महाद्वीपीय अंडर 20 प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों में हैं। और एथलेटिक्स की बात है तो इस महीने के आखिरी में हो सकता है कि जैवलिन में वापस भारत कुछ और जोहर दिखाता हुआ नजर आए, डायमंड लीग इंतजार कर रही है।
1: जी हाँ बिल्कुल, नीरज चोपड़ा हालांकि इस बार कोई नया खिलाड़ी आपके सामने भाला फेंक में आएगा, लेकिन फिर भी इस मुकाबले पर तो अपना आधिपत्य भारत ने जमा रखा ही है। और जिस तरह से आप शहनवाज की बात आपने की, एक उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ, तेजी से उभरता हुआ ये खिलाड़ी है 8.23, और सबसे कम उम्र में 8 मीटर की छलांग कूद करने वाला, ये बहुत कम ऐसे एथलीट भारत में है, तो इन पर भी नजर रखनी पड़ेगी आगे देखिए क्या होता है।
0: इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी,
1: चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही है।
0: जी बिल्कुल, इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और इनकी उपलब्धियों पर। श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, शबाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन

0: मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर

0: छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल

0: सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union cabinet increases minimum support prices MSP of 4-

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में इस समय आप आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं पंकज उदास।

पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरते, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी

0: की शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है, क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
0: जी
1: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
0: जी
1: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
0: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
0: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते

0: रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
1: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी

0: सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए।

0: के तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री के ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी,

0: एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा, सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिव

0: प्राइस करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन। प्रस्तुता सुमन कंवर। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।

नमस्कार श्रोताओ, हेलो मन भवन के साथ मैं सुमन हाजिर हूँ। साथियों, आज जन्मदिन है एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर का जो आगे चलकर गजल गायक और हिंदी फिल्म जगत के गायक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। हम बात कर रहे हैं मनहर उदास की। अपने नाम के अनुरूप इनकी आवाज मन को हर लेती है। सांवर कुंडला गुजरात में 13 मई 1943 को मनहर का जन्म हुआ। 1969 में बनी

0: फिल्म विश्वास में इन्होंने पहली बार गीत गाए और इसके बाद पूरब और पश्चिम, अभिमान, कुर्बानी, अमृत, सौदागर, नाम, त्रिदेव, रामलखन, खलनायक, हीरो, सड़क, करिश्मा कुदरत का आप तो ऐसे न थे और जांबाज जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के गीतों को आवाज दी। आपने 300 से ज्यादा हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में पार्श्व गायन किया। इनकी प्रतिभा को पहचानने का श्रेय मोहम्मद रफी साहब को जाता है। फिल्म राजा साहब के एक गीत में ये रफी साहब के पीछे कोरस में गा रहे थे। रफी साहब को इनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने कल्याण जी, आनंद जी को कहकर एक गीत का अंतरा मनहर से गवाया। यहाँ से ही मनहर की सफलता की कहानी शुरू हो गई, जो लंबे समय तक चली। आकाशवाणी सूरतगढ़ आज दिन विशेष पर मनहर उदास को बधाई और शुभकामनाएं देता है। और अब लेते हैं प्रोग्राम की ये पहली कॉल। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: गांव खोकरा वाली से विनोद बासा निवेदन कर रहा हूँ।
0: विनोद जी, क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: आरजू मूवी का गीत सुना दीजिए
0: जी। कौन सा गीत?
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अच्छी की मिलकर बारों की, वो गीत है ना
0: जी,
1: नाम ले लें जी।
0: हाँ जी,
1: विशाल बारा सा, विकास बारा सा, रोशनी बारा सा, शगुन बारा सा
0: जी। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: जगताप दिव्यन बादवाल डानी से टेकचंद चारण बात कर रहा हूँ।
0: टेकचंद जी, अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
1: अपने बारे में, मेरा गांव सूरतगढ़ तहसील के छोटा सा गांव है बादवाल डानी। बार में
0: जी
1: मिसेस संतोष देवी बिटिया योगेश्वरी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मैम गंगानगर में।
0: जी जी जी तो हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं आप?
1: बिल्कुल बराबर
0: जी। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम याद नहीं मुझे, गीत के बोला रेशम की डोरी।
0: जी, ये पुरानी साजन फिल्म का गीत है।
1: साजन फिल्म का शायद मुझे।
0: जी, हम आपको जरूर सुनवाएंगे। कोई नाम अगर लेना चाहें साथ में?
1: मेरे साथ बेटा सत्यप्रिय, जय सिंह, बेटा योगेश्वरी, रणजीत सिंह सुथार।

0: और मेरे अंकल जी गुरदेव सिंह पघानिया,
1: जी
0: सरनेक सिंह जी और कृष्णलाल जी राहड़ा जो रेडियो सुनते हैं बहुत पुराने समय से।
1: तो आप सभी को हम सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो मन भावन,
0: हाँ जी, हेलो मन भवन।
1: नमस्ते दीदी। सुमन दीदी बोल रही हो ना?
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: आपकी आवाज इतनी प्यारी है ना, पता चल जाता है।
0: मुझे भी पता चल जाता है कि हमें निर्मल ने कॉल की है।
1: हाँ जी, निर्मल शर्मा, गंगानगर से। हाँ
0: जी, इसलिए हमने भी पहचान लिया आपको। जी निर्मल,
1: जी
0: क्या हाल चाल हैं आपके?
1: हाँ
0: आज
1: जी,
0: क्या फरमाइश लेकर आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं?
1: आज मेरे को सुना दो, लता जी की आवाज में सुना दो,
0: जी
1: अच्छा सा कोई।
0: कोई भी गीत सुनवा दें।
1: नहीं, मैं ना पसंद करके रखती हूँ अपने माइंड में, लेकिन जब कॉल मिल जाती है ना तो मैं भूल जाती हूँ सुनना।
0: तो आप यूं कीजिए कि थोड़ा सा समय ले लीजिए और याद करके हमें बता दीजिए, क्योंकि अगर हम आपकी पसंद से सुनवाएंगे ना तो हमें ज़्यादा खुशी होगी।
1: चलो ये सुना दो फिर, मुकेश जी की आवाज में। जाऊं कहाँ बताए दिन,
0: अच्छा, आपने बदल दिया
1: अब यही
0: गीत।
1: आया माइंड में। हम ले लूं मैं,
0: हाँ जी,
1: दिनेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, मोहन शर्मा, कार्तिक शर्मा, मयंक, शशांक, सन्नी, गुंजन, सोमन, सुनीता।
0: जी तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।
2: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने,

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
2: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शर्म।
2: मेरे पास वक्त नहीं है कुछ बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जी हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी सुल्तान सिंह जी, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं, हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं।
1: हाँ जी,
0: आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज जी मेरी दोस्ती का जन्मदिन है
0: जी,
1: मैं नाजाखर का, उसके एक गाना भेंट करना चाहता हूँ
0: जी।
1: बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, क्योंकि हजारों साल ये मेरी है आरती। हाँ, प्रोग्राम सभी सुनते हैं जी, मैं बहुत अच्छे प्रोग्राम है सारे ही।
0: शुक्रिया।
1: फोन आते रहते हैं, सोचता हूँ कि वो कहते हैं जी आपके सूर्तकट का कोई जवाब नहीं है। हाँ नहीं जी, फरमाइश के प्रोग्रामों का तो विशेष कर उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं इतने खटपट जाए, इतने नाम पढ़ते हैं, पूछो ही मत।
0: जी हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर पाए।
1: नहीं, और भी जो प्रोग्राम होते हैं, पिछले दिनों मैंने आपका वो कॉलेज का प्रोग्राम था, एक वो अस्तु प्रतियोगिता भाषण का, वो सुना था, वो भी बहुत सुंदर था।
0: जी जी
1: सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं
0: जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
1: अपने साथियों का नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: हाँ जी,
1: हाँ मेरे साथ हैं जी कपिल देव चरण, हिमानी जाखड़ है, और इन सब हम सबको ये गीत सुना दे जी।
0: जी आप सभी सुनिए ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो मनभावन।
1: मैडम जी, राम राम है। सुमन
0: राम राम, श्रवण जी बोल रहे
1: जी
0: हैं?
1: बोल रहे हैं।
0: हाँ जी
1: सरोनुमा गांव है फाजिलकापन।
0: जी श्रवण जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया। गर्मी चालू होगी।
0: हाँ जी, गर्मी का तो मौसम है ये कहें कि हाँ, महीना भी आ गया है गर्मी का।
1: बढ़िया जी, गर्मियों की मत करिए मत गया।
0: हाँ जी, ये ज़रूरी होता है, मौसम के जो परिवर्तन है वो
1: हाँ जी
0: ज़रूरी होते हैं। हम लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, प्रकृति ने बनाई है तो उसका कहीं ना कहीं कोई महत्व है।
1: हाँ जी फरमाइश
0: जी, आज फरमाइश क्या है आपकी?
1: है। एक मैडम जी कह रहे थे जाने मन फिल्म की सुना रही हो। हाँ,
0: जी, कोई नाम अगर बताना चाहें।
1: नाम तो जी है तो भैया बहुत ही, पर थोड़े बता दी मैं।
0: हाँ जी
1: राम जी रणवा, शिवाजी के दर्शन, अजमल जी पारीख, अरविंद झिंझा, केलाल जी बेनेवाले, कोई एक राजू डायसिया, कोई जलालाबाद, नाम साहू बेटी बहुत ही है जी।
0: जी तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: मैं रानी जाम बोल रही हूँ, रानी जा बीकानेर से।
0: जी। रानी जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है प्रोग्राम के जरिए हमारी।
1: हाँ जी मैडम, दूसरे श्रोताओं को भी मौका देना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, ये सही बात है
1: हाँ जी,
0: जी। तो रानी जी, आज क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: फिर तेरी कहानी याद आई मूवी से,
0: जी
1: दिल में सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे।
0: जी जी जी कोई नाम बताना चाहें?
1: हाँ जी, बिट्टू जाम, मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं।
0: आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं
1: मैं तहसील भादरा गांव अनूप शहर से गजानंद शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी? गजानन जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते
1: हाँ
0: हैं
1: जी, आप?
0: गजानन जी आप?
1: मैं रंग पेंटिंग का काम करता हूँ दीदी।
0: जी, तो ये आपका जो काम है ये तो मुझे लग रहा है कि 12 मासी है, 12 महीने चलता होगा। अच्छा
1: हाँ चलता रहता है दीदी।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आज फरमाइश क्या है आपकी?
1: हाँ दीदी, फरमाइश है संघर्ष फिल्म का।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: मेरे पैरों में घूम रू बंदा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। हाँ
0: जी? कोई नाम
1: जी,
0: बताना चाहेंगे परिवार के लोगों
1: हाँ
0: के?
1: हाँ नाम मेरा छोटा भैया डॉक्टर तारा सिंह है, शर्मा
0: जी
1: अशोक कुमार शर्मा, ममता मित्तू किन्नू और साहिल राघव और मुरारी लाल शर्मा, और मेरा अंकल अजय मदन लाल शर्मा।
0: जी तो आप सभी को सुनवाएं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो मनभावन जी।
0: हाँ जी, हेलो मनभावन।
1: सुमन जी,
0: हाँ जी
1: जावेद खा जाइए। बोलो क्या
0: जी, जावेद जी
1: हाल चाल है जी?
0: बढ़िया हैं, आप बताएं
1: फोन बहुत दिनों बाद जी।
0: जी। अब बहुत दिनों बाद ही अगर आप लगाएंगे ना, तभी आपका शामिल होगा।
1: अरे
0: नहीं, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि सभी श्रोताओं को शामिल होने का मौका मिलना चाहिए।
1: हमारे
0: चिन्मय
1: दोस्त मुख राम जी, उनसे बात करना चाहिए। बताएंगे आपने फरमाई। नमस्कार जी।
0: नमस्कार। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गीत तो सुना दो, राम चोरी गुना में जी। सुन बाबा सुन।
0: अच्छा, सुन साहिबा सुन।
1: हाँ सुन साहिबा। अच्छा एक मेरी बात सुनो जी।
0: हाँ जी
1: जुबेर खान है, जुबेर खान
0: हाँ जी।
1: वो सो मेरे मित्र है, उसने आज मेरे पास बात है, मेरे को मतलब नया जोड़ा है
0: अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है
1: आपको।
0: आपका। और आज आपने कॉल की, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे।

0: हेलो।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गांव रामपुरा मटोरिया से मुरारी शर्मा बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी मुरारी भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत अच्छे दीदी, आज मेरा कॉल भी लगे आपके साथ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे
1: बिल्कुल
0: पुराने श्रोता हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम्स आप सुन रहे हैं, तो
1: बिल्कुल दीदी,
0: हमें खुशी आपसे बात करके बहुत हो रही है। तो आज क्या
1: बिल्कुल
0: सुनना
1: दीदी।
0: चाहेंगे मुरारी भाई?
1: आज दीदी आप सौदागर फिल्म का गीत सुना देना, लता की आवाज है और गीत ये बोल है दीदी, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो या छांव, वो दिन हो के रात रहे।
0: जी, हम भी यही कहेंगे, आप जैसे श्रोताओं का आकाशवाणी के साथ
1: बिल्कुल
0: साथ बना रहे।
1: दीदी, कुछ लोग मेरे साथ, मैं उनके में नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ जी जरूर।
1: रमन है, अमन है, रवि है, तनीष है, ताऊ शोलाल जी बेनीवा है, गजानंद शर्मा है और माधुरी जी लो है 14 BPM से।
0: जी, तो आप सभी को हम सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो वन भवन।
0: हाँ जी, कौन बोल
1: नमस्ते
0: रहे हैं?
1: मैडम,
0: नमस्ते
1: मैं राज्यसभा से प्रेम कुमार लेगा बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी। प्रेम कुमार जी, क्या
1: हाँ,
0: हालचाल? आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे, आपके हाल चाल सुनाइए जी।
0: जी बढ़िया। आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैं तीसरी कसम फिल्म है वो गाना सुनना चाहता हूँ। वो गाने के बोल है जी, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैडम।
0: जी
1: हाँ जी, मेरे पास कई साथी है उसके भी नाम लेना चाहता हूँ।
0: बताएं।
1: मेरे पास है अनिल कुमार खांतड़िया, रामकिशन स्वामी और योगेश कुमार शर्मा, छह कली राजेंद्र सिंह
0: जी,
1: और प्रेम सिंह, इतने हैं मैडम जी।
0: आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: टारगेट सिटी सहारनपुर से।
1: जी पवन जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका।
0: स्वागत, आज तो हमें करना चाहिए आपका। काफी दिन बाद बात हो रही है अपनी।
1: हाँ जी बिल्कुल। और पवन जी, क्या चल रहा है इन दिनों?
0: बस स्कूल के कहते हैं ना, एक जो वेकेशन शुरू होने वाली है तो अंतिम गिनती चल रही है, दो तक पहुंच गए हैं और एक और जीरो बोलना बाकी रह गया।
1: जी बहुत अच्छी बात है। आज फरमाइश क्या है पवन जी आपकी?
0: फिल्म जूली, दिल क्या करे जब किसी से प्यार हो जाए।
1: जी जूली फिल्म का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, कोई नाम बताना चाहें तो बताएं।
0: बस मेरी मिसी शालू कटारिया, बेटा समीर और मेरा पूरा आकाशवाणी परिवार।
1: जी आकाशवाणी परिवार और आपका हमारा सबका साथ बना रहे।
0: यूं ही बना रहे और बातचीत होती रहे हमारी।
1: आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ जी।
0: जी? उत्तम जी, आपसे हमारी पहले भी बातचीत हुई है, प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है।
1: सुमन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बात हुई है आपसे,
0: हाँ जी, हुई है। उत्तम जी, क्या सुनना चाहेंगे?
1: मुझे सुना दीजिएगा। रानी रूपमती का गीत है, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं
0: जी, बहुत खूबसूरत गीत है, आपको जरूर सुनवाएंगे हम।
1: जी। ये गीत बीकानेर के जो श्रोता है, नरेंद्र सुराणा नाम तीन श्रोता रह चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मैडम, तो उन्हीं की याद में मुझे ये गीत सुनना है
0: जी, ओ, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम यही
1: जी।
0: प्रार्थना करते हैं।
1: उन्हीं की याद में मुझे ये गीत सुनाए आप।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो मन भावन।
1: हाँ जी, आप सुमन शेखावत बोल रहे हो जी?
0: हाँ जी
1: मैं जी श्रीगंगानगर से प्रेम कुमार भार्गव बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करते
1: जी,
0: हैं हम प्रोग्राम में।
1: मेरी तरफ से सभी श्रोताओं और उद्घोषकों को नमस्कार जी।
0: जी
1: अब मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जी, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, पशु और पक्षी का ध्यान रखें और उनके दाना पानी और पलिंडे बांधे ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस 2 महीने की बात है, फिर तो मान आ जाएगा।
0: जी तो आज
1: गीत
0: फरमाइश क्या है
1: जी हमें सुना दो, वो काम तो फिल्म का सुना दो जी।
0: आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सुमन जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: सुमन जी, मैं सज्जन बात कर रहा हूँ। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है सज्जन जी आपका।
1: मैम। तो
0: आज फरमाइश क्या है आपकी?
1: ये फरमाइश रहेगी मैम, फिल्म शंकर हुसैन का, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। मैम,
0: जी, बहुत खूबसूरत गीत चुना है आपने। जी
1: कई दिन से कोशिश कर रहे थे कि कॉल लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन हमारे श्रोता इतने दूर दराज से जुड़ गए हैं कि नंबर ही नहीं आता है हमारा। नवंबर में मेरी आपसे बात हुई थी और 6 महीने के बाद में आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं।
0: जी
1: श्रोताओं को खुद को भी सोचना चाहिए कि दूसरे श्रोता भी लाइन में लगे बैठे हैं, उनका भी कभी ना कभी नंबर आना चाहिए।
0: जी तो शायद इस वजह से आज आपका नंबर आ
1: हाँ, हो
0: गया
1: सकता है मैम। फिर वो बोलते हैं ना कि कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक
0: है।
1: पत्थर जरा तबीयत से उछालो।
0: जी जी जी
1: वो
0: जी
1: बात हकीकत है। मैं आज पूरा मन बना के बैठा था कि आज तो काल जैसे भी हो, कुछ भी हो, लगा लगा के ही छोड़ेंगे।
0: जी तो आपने जो ठाना वो आपने कर
1: हाँ, वो
0: लिया।
1: आज साबित हो गया।
0: आपने कॉल की, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नाम अगर बताना चाहें तो आप बता
1: नहीं
0: सकते
1: मैम,
0: हैं।
1: नाम तो किसी एक का लेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सभी श्रोता और आप सब, पूरा आकाशवाणी परिवार मिलजुल के सुनते हैं मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोतो, आज के कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला अमीलाल भाटिया और कप्तान सिंह का, और कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया। और अब सुमन को इस बात के साथ इजाजत दीजिए कि उससे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, आदि मुजरिम नहीं हूँ, गलती से इश्क हुआ था। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आफी के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो वन भवन। प्रस्तोता थी सुमन कंवर। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक थे नवीन सिसोदिया। मीडियम वेव 326.72 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।

0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Thor, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and proper